दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना कार्यक्रम अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सुबह की शुरुआत हो आराधना के साथ दिव्यता से भरा एक खास अनुभव। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आराधना अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों भक्ति संगीत आराधना का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो रोज रुचिका के साथ। भजन और मंत्रों की गूंज आराधना लेकर आता है हर दिन दोस्तों आपके दिल को सुकून देने वाले ये प्यारे प्यारे से भजन। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भजन।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं आराधना। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आराधना, जहां मन को मिले सुकून और आत्मा को शांति। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका।

दोस्तों भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आराधना आप सभी सुन रहे थे अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

92.2 MHz पर ए तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माती दी महक तशु तो कर दिन अपने कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते करने तो तुहां सारे इन्हें सुनदे रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दर्शकों तो सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत तो फिर ते आपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है से फिर ते आहां अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो तुहां सारे भी सुना कने नहीं सुनदे रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला आशुतोष तुम्हारे सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देन अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने तुम्हारे सारे सुना देन अपना माटी दी महक कार्यक्रम तशुतोष फिर यहाँ तुम्हें ले चल देन एक गीत संगीत दी तरफ तुम्हारे भी सुना कन्ने सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं तुहा सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुना देने से सुना देने माश्टी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। कार्यक्रम च फिर अहां अगे बढ़ने जिहड़ा कि तुहंदा ध्यान है से फिर एक गीत संगीत दी तरफ ले चलदे ने।

दर्शकों तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत तो फिर ते आपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है से फिर ते आहां अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो तुहां सारे भी सुना कने सुनदे रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तोहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है सही संपन्न होंदा है तो तोहा सारे अपनी रेडियो दोस्त शशि जी दे अनुमति कन्ने सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: रन कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें।
2: थोड़ी देर हो गई। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट।
1: सर, टेस्ट ड्राइव।
2: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, हा? आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, हैं? वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो शुतो आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रंजिता के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। हिमाचल के मंदिरों में दान की गिनती की होगी वीडियोग्राफी। मेडिकल कॉलेजों में 125 करोड़ से स्थापित होगी ऑटोमेटेड लैब। अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। तेल बाजार पर मंडराया संकट, महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, IEA की बड़ी चेतावनी। भारत न्यूजीलैंड ने संबंधों को दिया रणनीतिक महत्व का दर्जा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA ने प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के 105 अतिरिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसी के मद्देनजर आयोग ने तीनों पोस्ट कोड के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को 11 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक पुनः खोल दिया है। अभ्यर्थी 25 जुलाई 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल की माटी पर किसानों की समृद्धि की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समृद्धि की इस कहानी की रूपरेखा तैयार की है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से किसानों के जीवन में खुशहाली आ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान कर रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वर्ष दर वर्ष इसमें उल्लेखनीय वृद्धि भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार वर्ष 2026 से 2031 हाई वैल्यू नट मिशन की शुरुआत करेगी। इस मिशन के तहत अखरोट, बादाम, खुमानी तथा चिलगोजा जैसे उच्च मूल्य वाली समशीतोष्ण टेम्परेट नट फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मिशन बागवानी क्षेत्र के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों जैसे पुराने हो चुके बागानों, कम उत्पादकता, कटाई के बाद पर्याप्त आधारभूत संरचना की कमी तथा मूल्य संवर्धन की सीमित अवसरों का समाधान करेगा। राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद हिमाचल सरकार ने राज्य के सरकारी स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले मंदिरों तथा अन्य प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए SOP जारी की है। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जारी इन निर्देशों का उद्देश्य श्रद्धालुओं के दान, आभूषण, नकदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिलों में सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिर प्रबंधन समितियों को भी इन सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI सुविधा का शुभारम्भ किया। IGMC शिमला के बाद ये उन्नत इमेजिंग तकनीक हासिल करने वाला चमियाना संस्थान प्रदेश का दूसरा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 3 टेस्ला MRI मशीन के चालू होने से संस्थान के विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विभागों की जांच क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये मशीन न केवल उच्च गुणवत्ता वाली इमेजिंग देगी बल्कि बेहद कम समय में जाँच पूरी कर सटीक निदान सुनिश्चित करेगी। दुनिया में एक बार फिर तेल संकट गहराने की आशंका जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़कर बड़े युद्ध का रूप ले लेता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और ईंधन के कीमतों पर बढ़ सकता है। IEA का कहना है कि फिलहाल वैश्विक तेल बाजार धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव इस सुधार को कभी भी पलट सकता है। अगर इस क्षेत्र में तेल उत्पादन या समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई घट सकती है और पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री सुरक्षा पर समझौता करने के बाद
भारत ने न्यूजीलैंड के साथ भी समुद्री सुरक्षा सहयोग की शुरुआत की है। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए व्यापक रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। ये रोड मैप समुद्री क्षेत्र में संवाद, सूचना साझाकरण, संयुक्त अभ्यास और क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगा, जिससे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि आएगी। साथ ही भारत न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक महत्व का दर्जा दिया है। देश के किसी भी स्थान से आने वाले पर्यटकों एवं यात्रियों के लिए हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा पुख्ता हो गई है। मेहमानों की यात्रा को अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पुलिस ने सभी नागरिकों के लिए रिजसेफ HP मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया है। इसे पुलिस की ओर से डाउनलोड करने की अपील की जा रही है। इस ऐप को GNA यूनिवर्सिटी के तृतीय वर्ष के इंटर्नशिप के विद्यार्थियों में आर्यन और मोनू ने ऊना पुलिस संघ मिलकर तैयार किया था। बीते माह मई में पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने इस ऐप का आरंभ किया और प्रदेश स्तर के लिए ऐप को डेवलप करने की बात कही थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश के हकदार हैं। उन्हें केवल इस आधार पर इससे वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके अनुबंध में इसका उल्लेख नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि मातृत्व अवकाश एक वैधानिक अधिकार है जो किसी सेवा, अनुबंध या समझौते की शर्तों पर निर्भर नहीं करता। अदालत ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के द्वारा धारा 27 का हवाला देते हुए कहा कि गर्भवती महिला को मातृत्व लाभ देना नियोक्ता का कानूनी दायित्व। स्कूली शिक्षा निदेशालय ने विशेष रूप से दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए CBT शिक्षक के 72 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 जुलाई को होगी। शिक्षा निदेशालय ने जिलावार रिक्तियों को रोस्टर और पात्रता संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI की पढ़ाई अब पारंपरिक तकनीकी ट्रेडों तक सीमित नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 संस्थानों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 6 ITI में डेयरी, बागवानी और प्राकृतिक खेती के नए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है। इस गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: चलन कहाँ जा रहे हो? Let's go.
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर हो गई.
3: मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए.
2: थैंक यू.
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
3: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ. अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
4: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं.
5: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है. टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता. इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है. पानी बचाने के कई उपाय हैं. जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, अब खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना, मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई। वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है ये लोग?

सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। पहुंच गए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 एफएम के स्टूडियो और अब शुरू होता है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और हो गई है ना आप सबकी भी एनर्जेटिक शुरुआत आज की वीकेंड के बाद। अपने अपने कामों पर पहुंच गए होंगे आप या फिर पहुंचने वाले होंगे, रास्ते में होंगे, सुन रहे होंगे हमें कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से। और जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं या मैं यूं कहूं कि होम मेकर्स जो कि अपने अपने घरों को बनाती हैं, बहुत अच्छी तरह से सजाती हैं, संवारती हैं, बहुत सारी जो महिलाएं हैं हमसे जुड़ी हुई हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो भाई हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक तो हम लोग जब फेसबुक लाइव करते हैं वहाँ पर कमेंट्स किया करें और लाइक भी करा करें। क्या कहना चाहते हैं आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं आप। और साथ में हमारा एक फ़ोन नंबर भी है, हमारा लाइव कार्यक्रमों का फ़ोन नंबर तो आपको पता ही है 7018-1171091। और यही वो नंबर है जिससे कि आप हमारे से इस कार्यक्रम में भी बात कर सकते हैं, चाहे वो मैसेज के थ्रू या फिर लाइव बात कर सकते हैं आप 10 बजे के बाद। तो जो भी कुछ आपने महसूस किया हो जिससे कि कुछ समाज का भी भला होता हो, यानी कि कम्युनिटी की भी बात हो, तो आप हमसे कर सकते हैं इसी कार्यक्रम में। और अगर आपके पास कोई, मान लो कोई परेशानी है, कोई आपको लगता है कि ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है और उसका समाधान भी आप ही के पास है, तो वो भी ज़रूर सुझाइएगा कार्यक्रम में। चलिए ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन रह गया है मौसम। और मौसम की बात करेंगे हम एक प्यारे से गीत के बाद।

समझ ही गए होंगे आप, लवर्स फिल्म का ये गीत है। आवाजी यानी युगल स्वर हैं अमित कुमार और लता।

लॉस्ट लवर्स फिल्म से आपने सुना ये गीत, अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बात कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

और श्रोताओं, अब ले लेते हैं हम मौसम का हालचाल कैसा है, जान लेते हैं धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में। मौसम का ही गीत सुन लिया ना आपने कि कैसा मौसम आ गया है। जी हाँ, ये जो बरसात का मौसम होता है ना, इसमें बातें मुलाकातें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की पूरी पूरी संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त तो मौसम जो है बाहर ठीक ही बना हुआ है, यानी कि कोई बूंदाबांदी भी अभी तक नहीं हुई है, परंतु आसार पूरे पूरे हैं। हवा की गति लगभग 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा से रहेगी और हवा में नमी है 63%, यानी कि 57% से लेकर के 63% के बीच में। दिन भर की बात करें तो आसमान में मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर के समय कुछ इलाकों में मध्यम बारिश या फिर छिटपुट गरज के साथ बौछारें पड़ने की 45% तक संभावना बनी हुई है। शाम को भी आंधी तूफान या हल्की बूंदाबांदी का असर दिख सकता है और रात के समय मौसम थोड़ा सा ठंडा रहेगा। वैसे कल एक बात नोटिस की आपने, कल रात को भी मौसम में ठंडक थी, शाम से ही शुरू हो गई थी ये ठंडक। आने वाले दिनों की बात करें तो 14 जुलाई यानी कल से लेकर के शुक्रवार 17 जुलाई तक रुक रुक के गरज के साथ बारिशें होने की संभावना है। और कल रात को तो आपको पता ही है, अनंतनाग में भी बादल फटा है दो जगह और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खैर, इन प्राकृतिक आपदाओं का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब जब हम नए घर बनाते हैं ना अपने, तो हम हमेशा सोच समझ करके देखभाल करके बनाएं और पूरे जो मानक होते हैं उन नियमों के अनुसार बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आगे आने वाले समय में हम जिन घरों में हम रहते हैं, जिसमें हमने पूरा अपना जीवन गुजारना है, वो घर तो कम से कम काफ़ी समय तक सुरक्षित रहे और साथ में उसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। ये नहीं कि एक बार बना लिया और बस बात ख़त्म, धीरे धीरे उसकी मेंटेनेंस भी समय समय पर होती रहनी चाहिए, तभी वो घर भी हमारा साथ देते हैं। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा।

दोस्तों, बरसात के मौसम के तो दो गीत अभी आपने सुन ही लिए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अब हम, वैसे आपको बता दूं, बरसात मूवी का गाना था अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गीत कौन सी फिल्म का था तो बता दिया आपको, जाइए सर्च कीजिए, ढूंढिए, देखिए और अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कुछ पलों के इंतज़ार कीजिए।

0: राष्ट्रीय शोक किया घोषित। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के साथ पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का किया शुभारंभ। चंबा जिला की मणिमहेश यात्रा के दौरान पवित्र डल झील के दर्शन करने के लिए इस बार श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करवाना हुआ अनिवार्य। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कल कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के साथ साथ पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है ताकि लोगों को बेहतर, सुलभ और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से आज हरोली में करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अतिरिक्त अस्पताल भवन की आधारशिला रखी जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस अतिरिक्त भवन के बनने से अस्पताल की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और मरीजों व उनके परिजनों को बेहतर व अधिक सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने पंचायतों में घरेलू व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण के लिए यूजर चार्ज वसूलने के निर्णय पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेशवासियों पर आर्थिक बोझ डालने का अभियान चला रखा है, जबकि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता को राहत देने के बड़े बड़े वायदे किए थे। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के बजाय केवल राजस्व जुटाने के लिए जनता की जेब पर डाका डाल रही है।
1: गांव-गांव में और हर गरीब परिवार पर नए-नए दुख देने का कार्य कर रही है। अब इनका नया एक तुगलकी फरमान आया है कि गांव में कचरा कलेक्ट करने के लिए हर घर में 50 रुपए का हर महीने टैक्स वसूला जाएगा। दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो इन्होंने कमिटमेंट चुनाव के समय में की थी वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही। मैं ये बात हिमाचल की जनता के सामने रखना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके लिए बहुत कम समय रह गया है, इन तुगलकी फरमानों को वापस लेगी।
0: केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में नए शैक्षणिक सत्र से अनेक नए व रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण बहुविषयक व कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं सहित रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर की गई है। कुलपति ने कहा कि विधि, चीनी भाषा, बौद्ध व तिब्बती अध्ययन, विज्ञान, जीआईएस व रिमोट सेसिंग सहित होटल प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके तहत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिला स्तर के विजेता राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करेंगे। राज्य स्तर के विजेता 12 और 13 अगस्त को राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आमंत्रित किया जाएगा। माय भारत 5 रचनात्मक श्रेणियों, नृत्य, संगीत, रील और लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक व स्लैम कविता में प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। प्रतियोगिताएं 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए होंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। सिरमौर जिला की समृद्ध लोक संस्कृति और विशेषकर हाटी समुदाय की पारंपरिक पहचान सिरमौरी लोहिया को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिलने पर पूरे गिरिपार क्षेत्र में खुशी की लहर है। सदियों से पहाड़ की ठंडी वादियों में लोगों को गर्माहट देने वाली ये पारंपरिक ऊनी लोहिया अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान के साथ दर्ज हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सिरमौरी लोहिया केवल एक ऊनी परिधान नहीं बल्कि हाटी संस्कृति लोक परंपराओं और स्थानीय बुनकरों की अद्भुत हस्तकला का जीवंत प्रतीक है। इसे स्थानीय भेड़ों की ऊन से पारंपरिक करघों पर हाथ से बुना जाता है। इसकी मजबूत गर्माहट और विशिष्ट बुनाई इसे अन्य ऊनी उत्पादों से अलग पहचान देती है। वर्षों से ये लोहिया सिरमौर के ग्रामीण जीवन लोक रीति रिवाजों और पारंपरिक वेशभूषा का अभिन्न हिस्सा रहा है। जीआई टैग ये प्रमाणित करता है कि सिरमौरी लोहिया अपनी विशिष्ट गुणवत्ता पारंपरिक निर्माण शैली और सांस्कृतिक महत्व के कारण जिला की अमूल्य धरोहर है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा जिला की पवित्र मणिमहेश यात्रा में इस बार कोई भी श्रद्धालु बिना पंजीकरण के पवित्र डल झील के दर्शन नहीं कर पाएगा। ये निर्णय जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सभी से पालन करने का आग्रह किया है ताकि मौसम की स्थिति को देखते हुए किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।
3: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस बार हम लोग मैंडेटरी करेंगे, उसके बिना किसी भी यात्री को उस तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। कुछ और जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, NDRF की डिप्लॉयमेंट, SDRF की डिप्लॉयमेंट, पुलिस की डिप्लॉयमेंट, उसमें भी वृद्धि की जाएगी ताकि अगर पिछले प्रकार की सिचुएशन वापस होती है तो हम लोग बेहतर स्थिति में हों कि हम उसको टैकल कर सकें।
0: प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए चलाई जा रही नीतियों और योजनाओं से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शिमला जिला में विशेष प्रचार प्रसार अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में लोगों को सांस्कृतिक दलों के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि पात्र लोग योजनाओं का लाभ ले सकें। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुमोदित सांस्कृतिक दलों द्वारा अनुसूचित जाति की अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटकों एवं गीत संगीत के माध्यम से प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही पात्र लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों व चिट्टा जैसे जानलेवा नशों से दूर रहने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बीते 24 बारिश हुई। हालांकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज व कल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, OTA रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के 105 पदों पर होगी भर्ती। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, सरकार शुरू करेगी हाई वैल्यू नट मिशन। वहीं दैनिक भास्कर के शब्द है, सरकार का हाई वैल्यू नट मिशन, अखरोट बादाम और चिलगोजा उत्पादन से बढ़ेगी बागवानों की आर्थिकी। दिव्य हिमाचल ने खबर दी है, अगस्त में होगा हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र, विधानसभा उपाध्यक्ष के साथ चीफ व्हीप का पद भरने की भी हो रही तैयारी। हिमाचल दस्तक लिखता है, 300 मेगावाट बिजली परियोजनाओं के लिए सरकार ने निजी कंपनियों से मांगे आवेदन। मौसम पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, कमजोर पड़ने लगा मॉनसून, भूस्खलन से बढ़ाई चिंता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक दिन का राष्ट्रीय शोक किया घोषित। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना के विकास के साथ पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का किया शुभारंभ। चंबा जिला की मणिमहेश यात्रा के दौरान पवित्र डल झील के दर्शन करने के लिए इस बार श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करवाना हुआ अनिवार्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे।

चलिए श्रोताओं, समाचारों की बात, प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। वैसे हमें पता है कि आप हमारे साथ ही थे, कहीं नहीं गए थे, और प्रादेशिक समाचारों से आपने बहुत सारी जानकारियां भी ले ली हैं। और हमारे उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक हो जो कि किसी न किसी खास वजह से आज का 13 जुलाई का ये दिवस मना रहे हैं।

और ले लेते हैं हम अभी इस समय आज का विचार इस सभा का। मन से चाहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप केवल बैठ करके सपने देखते रहें। मनचाहा पाने के लिए चाहना भी तो मन से ही पड़ता है। जी हाँ, ये है आज का विचार कि मनचाहा पाने के लिए चाहना भी आपको मन से ही पड़ता है। तो मन से चाहने के लिए का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप चाह तो लें और सपने देखते रहें बैठ करके कि बस हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। सच्ची चाहत हमेशा आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है कि आप सपने तो देखें ही लेकिन उसको पूरा करने के लिए काम भी तो करें, उठ करके कि बेड पर पड़े रहें बस सोचते रहें मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह। तो जब आप किसी लक्ष्य को दिल से अपना मान लेते हैं तो उसके लिए किया जाने वाला कड़ा परिश्रम भी आपको बोझ नहीं लगता है बल्कि उसमें आनंद आने लगता है। आप परिणाम की चिंता किए बिना खुद को उस काम में पूरी तरह से झोंक देते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। सच बताऊं तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये चेयर, इसको मैं कहती हूँ हॉट चेयर। और ये जो है, ये तो मेरा प्यारा सा माइक है जो कि मेरा दोस्त है। अब देख रहे हैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप हमें फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। जो ग्रीन वाला लोगो है ना हमारा, रेडियो गुंजन 91.2 FM, रेडियो गुंजन धर्मशाला वाला, उस वाले पेज से हम इस वक्त फिलहाल लाइव हैं। और हाँ, हमें ये भी पता है कि दूर दूर तक लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि लाइव में कई सारे कमेंट्स आते हैं। एक कमेंट तो कल भी मैंने देखा था, त्रिपुरा से कोई बोल रहा था कि मैं त्रिपुरा से इस कार्यक्रम को सुन रहा हूं और देख रहा हूं। धन्यवाद श्रोताओं, हमें इतना प्यार देने के लिए, विश्वास करने के लिए और हमारे

तो विचार जो हमने आज कर लिया उस पर थोड़ी थोड़ी बातें कार्यक्रम में आगे भी करेंगे। फिलहाल हम आपको सुनवा देते हैं एक और गीत, वो भी खूबसूरत सा प्यारा सा। चलिए यही गीत सुन लें जो कि बैकग्राउंड में बज रहा है। और हमारी इंदु जी आ गई हैं, वो देख रही हैं और लाइक भी कर रही हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट भी कीजिए कुछ, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम ज़रूर बताइए। और जो मैंने नंबर दिया है ना आपको 7018117091, उस पर कॉल ज़रूर कीजिएगा। कोई भी कर सकता है और अपने मन के विचार हमसे साझा कर सकता है।

दिल में सितारों का आंगन होगा। जीवन मृत्यु फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी।

गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो दोस्तों, आज इंटरनेशनल रॉक डे है और इस पर हम चट्टानों की मजबूती की बात भी कर रहे हैं। मतलब अब शुरू करेंगे बात करना आपसे, और बाहर सावन की रिमझिम बारिश कहीं ना कहीं तो होगी ही, हमारे स्टूडियो के बाहर तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ अब इस बारिश का भी कोई पता नहीं लगता है। कभी कभी शुरू हो जाती है, कभी रुक जाती है, कभी थोड़ी सी धूप दिखा देता है ये मौसम, और कभी अचानक अनायास ही, जैसे कल फॉग आई थी ना, देखा था आपने। अच्छा बताओ, किस किस ने उसका वीडियो बनाया है, किस किस के हाथों में तब मोबाइल थे जब वो उमड़ घुमड़ के बादल हमारे मुंह तक आ रहे थे। क्या सुंदर नज़ारा था ना वो। तो इस सुहाने मौसम में मैं अपने युवा दोस्तों से एक बहुत ही ज़रूरी और दिल की बात करना चाहती हूँ आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। ज़रा सोचिए, आज हमारे रिश्तों का स्वरूप कितना बदल गया है, है ना। आज की पीढ़ी यानी हमारे युवाओं के लिए रिश्ते शायद पानी की इन बूंदों की तरह हो गई हैं, जो आती हैं, छूती हैं, अच्छी लगती हैं और फिर बह जाती हैं। आज फास्ट फूड के इस दौर में रिश्ते भी फास्ट हो गए हैं। सिचुएशनशिप और कैजुअल के नाम पर आज युवा रिश्तों का जो असली मोल है वो गहराई शायद भूलता जा रहा है। बात बात पर रिश्ते बदल देना, छोटी सी अनबन पर पीछे हट जाना, क्या यही है आज का प्यार। आप जरा सोचिए, इस पर विचारिए और हम आगे बढ़ते हैं गीत के साथ।

और सबक फिल्म का ये गीत है सुमन कल्याणपुर की आवाज़। देखो कितनी गहराई है इस गीत में कि जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो इस मौसम में ना युवा भी यही सोचते हैं कि ये जो बारिश हो रही है काश ये थोड़ी देर रुक जाए, क्योंकि किसी को भाई मिलने का समय दिया हुआ है, शायद कोई आता होगा या आपको कहीं पर पहुंचना होगा, तो उस वक्त मन से ये गीत निकलता ज़रूर है ना।

तो कैसा लगा श्रोताओं आपको ये गीत सबक फिल्म का सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला।

तो आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं युवाओं के आज के बदलते रिश्तों के बारे में। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस है, यानी कि रॉक डे, पहले मुझे लगा था कि शायद इंटरनेशनल रॉक डे वो ना जो म्यूज़िक वाला होता है ना, रॉक म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक वाला, शायद वो वाला डे है। लेकिन जब मैंने पूरी तरह से सर्च की, गहराई में गई, तब पता लगा कि नहीं भाई, वो चट्टानों वाला रॉक दिवस है आज। तो हम तो वैसे भी पहाड़ों के साथ ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, हमारे आसपास तो काफ़ी सारी चट्टाने हैं, हमें दिखाई भी देती हैं, हम फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं, कई बार तो उस पर चलते भी हैं, ट्रैकिंग करते हैं ना कई बार। और कई जगह पर तो चट्टानों को काट करके ही सड़कें भी बनाई गई हैं,

तो भाई बारिश की चंचलता तो तभी खूबसूरत लगती है जब तक नीचे उसे संभालने के लिए एक मजबूत चट्टान खड़ी हो। अगर नींव में चट्टान जैसा भरोसा, स्थिरता और ठहराव नहीं होगा ना, तो रिश्ते भी पानी की तरह बह जाएंगे, टिकेंगे बिल्कुल नहीं। रिश्तों में आज़ादी और मस्ती ज़रूरी है, लेकिन उसमें चट्टान जैसी मजबूती और सदियों का पुराना विश्वास भी होना चाहिए। तो इसी सोच के साथ युवाओं की बदलती दिल और अरमानों और इस सावन के सोंधेपन को महसूस करते हैं इन प्यारे प्यारे गानों के साथ जो कि मैंने आज लिस्ट में रखे हुए हैं, जहां प्यार का इजहार भी है और उसकी गहराई भी।

अब बरसात फिल्म का एक और गीत आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें हैं।

अलका, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में आपने अभी सुना ये बरसात फिल्म का गीत। और ये बरसात फिल्म वो है जो मिडिल एरा में आई थी, जिसमें ट्विंकल खन्ना ने भी अभिनय किया है।

जी श्रोताओं, तो हम बात कर रहे थे हमारे ये जो इंटरनेशनल रॉक डे, चट्टानों का दिवस है, उस पर। और साथ में अपने प्यारे प्यारे युवा दोस्तों के बारे में। और वैसे मैं सच कहूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो कई तो युवा बहुत समझदार भी हैं, अपना जो उनका कर्तव्य है या फिर आगे उनको क्या करना है, उन्हें पूरी पूरी क्लैरिटी है, विज़न है, लेकिन कई युवा जो हैं हमारे रास्ते से भटक रहे हैं।

तो रिश्तों की अहमियत क्या जानती है आज की युवा पीढ़ी? आज़ादी से पहले और बाद में रिश्ते कर्तव्य की भावना से बनाए जाते थे, लेकिन आज वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पे बनते हैं और परिवार सुरक्षा चक्र से सर्विस प्रोवाइडर्स बन गए हैं। 75 साल में चूल्हा टूटा तो घर टूटा, बंटवारा हो गया और पैसा दूरी तय करने लगा, हक मिला फर्ज गया, तलाक कानून हुआ, बेटी को बराबर हक पर बाप बेटी में प्रॉपर्टी केस बढ़े। मसीहत में पुत्र को सब कुछ, पुत्री पराए घर की कह करके वंचित। घरेलू हिंसा कानून ने सुरक्षा तो दी, लेकिन अदालत में साबित करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। फिर लिविंग को लीगल दर्जा मिल गया, कानून ने सुरक्षा दी तो फंसने के डर से लोग रिश्तों से दूरी बना करके भाग खड़े होते हैं। बड़े शहर में रह रहा बेटा अपनी पत्नी से पूछता है, माँ से 5 मिनट बात कर लूँ? पार्टनर बगल में बैठा है, ध्यान उसका रील में है और शहरी कपल फोन की वजह से झगड़ा करते हैं और इंस्टा स्नैपचैट पर ब्रेकअप कर लेते हैं। होता है ना ऐसा? लड़ाई अब रिप्लाई लेट था पर होने लग पड़ी है। समाज से कट गए हैं सब, पड़ोसी पराए की तरह, और मकान मालिक किराया लेने के लिए आता है पर कभी पूछता नहीं है कि भाई घर में क्या चल रहा है, आपके घर में अगर बीवी से झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि उसको सिर्फ अपने किराए से मतलब है। और यहाँ पर जो हमें फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ वो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और ताकि हमें पता चल जाए कि कौन श्रोता जो हैं वो हमें देख रहे हैं। और जो हमें सुन रहे हैं उनका भी, और साथ में जो लाइव देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है।

अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो दो तिहाई बुजुर्ग तो अकेले रहते हैं। ओल्ड एज होम को इंडस्ट्री बना दिया गया है। मैस एक कम्युनिटी और अकेलापन महामारी। भारत में 20 से 35 साल तक के 39% युवा क्रॉनिक यानी लोनली हैं। बाप कहता है हमने तो 7 फेरे लिए थे, 7 जन्म निभाए, और बेटा कहता है रेड फ्लैग मिले तो 7 दिन में छोड़ दिया। दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक भी हैं। घर बीच में पिस रहा है। अनुमान है कि अगले 30 साल में आबादी घटेगी, रिश्ते कम होंगे और लोग भी कम हो जाएंगे। समाज रीस्ट्रक्चर हो रहा है, खून का रिश्ता कमज़ोर पड़ रहा है, पसंद का रिश्ता मजबूत हो रहा है, लेकिन किस हद तक वो सब आप लोग जानते ही हैं। परिणाम, पारंपरिक रिश्ते से आज़ादी और संकट में कोई साथ नहीं देता है। बाप की अंतिम यात्रा में कंधा देने तक के लिए वक्त नहीं है लोगों के पास। देखो, मैं फिर कह रही हूँ कि मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। बहुत से लोग बहुत संजीदा हैं, अभी भी सब कुछ देखते हैं, अपनी माता पिता का ध्यान भी रखते हैं और साथ में पूरी फैमिली को साथ में लेकर के चलते हैं। वो चाहे हमारे युवाओं में यूँ कहूँ महिलाएँ हों, लड़कियाँ हों या लड़के हों, बहुत इमोशनल भी हैं लोग, लेकिन ज्यादातर की बात आज मैं कार्यक्रम में कर रही हूँ। दादा के जमाने में छत एक थी, चूल्हे 4, पर दिल फिर भी एक था। आज कमरा एक है, फोन 4 हैं, पर दिल अपना अपना है। तो जेंजी को दोष बिल्कुल मत दीजिए। हमने ये तो सिखाया है, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, रिश्ता कमाना, लेकिन भूल गए हैं। और अब आधुनिकता के नाम पर क्या क्या हो रहा है, इसकी बात करेंगे हम गीत के बाद।

आशा फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में सुना आपने बेहद ही खूबसूरत सा गीत। इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ष रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं। आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं कि रिश्तों को कितनी अहमियत देती है आज की युवा पीढ़ी और किस किस तरह से अहमियत देती है और क्या क्या आजकल हो रहा है उस पर भी बात होगी धीरे धीरे कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज की तारीख का जो महत्व है वो तो जान लेते हैं। तो 13 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला वनडे मैच खेला था और लॉर्ड्स के मैदान पर ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की थी। तो 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स यानी हेलिंग्स में खेला गया था और टीम के कैप्टन थे अजीत वाडेकर। और इसी दिन भारत ने नटवेस्ट सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर हरा करके शानदार जीत हासिल की थी जिसके बाद सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट भी लहराई थी। अब कुछ दुखद बातें भी हुई थी जिनको हम दोहराना तो नहीं चाहते हैं लेकिन क्योंकि ये इतिहास है तो आपको बताते हैं कि 13 जुलाई 2011 की शाम को मुंबई के तीन व्यस्त इलाकों झावेरी बाजार ओपेरा हाउस और दादर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और इस दुखद हादसे में 26 लोगों की जान चली गई थी और 130 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। और इसके साथ ही क्रांतिकारी जतेंद्रनाथ की भूख हड़ताल 1929 को शुरू हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्रनाथ दास यानी जतिन दास ने लाहौर जेल में कैदियों के अधिकारों के लिए अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी जो कि बाद में 63 दिनों तक चली और फिर वो शहीद हो गए। श्रोताओं आजकल भी हमारे देश में एक भूख हड़ताल चल रही है। आप

सभी अवगत हैं इस बात से। सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं दिल्ली में CJP पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ और उनके समर्थन में हैं, और वहाँ पर उनकी जो भूख हड़ताल का जो दिन है वो 15वें दिन, आज तो शायद 16वां दिन हो गया है, तो उसमें पहुँच चुकी है। अब देखिए, कुछ लोग तो इस आंदोलन को कह रहे हैं कि ये ऐसे ही है, मतलब आई वॉश है या कोई करवा रहा है, और कुछ लोग जो हैं जो समर्थन में हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि अब सोनम वांगचुक जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने उनका साथ दिया है, तो इस वजह से कुछ जो प्रभावशाली लोग हैं वो वहाँ जा रहे हैं, उनका समर्थन भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रशासन को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, और अगर ये आंदोलन किसी भी नतीजे पर पहुंच जाए और इसमें सबका ही फायदा हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आखिरकार देश तो हमारा ही है ना। तो आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव इसी दिन दिया था, यानी आज ही की तारीख में दिया था, 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का सुझाव दिया गया था। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने मिलकर के कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज की स्थापना की थी, जिसने भारत के आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत रत्न सहित अन्य सभी नागरिक सम्मानों को वापस लेने यानी बंद करने की घोषणा कर दी गई थी, हालांकि 1980 में दोबारा इन्हें शुरू कर दिया गया। केसरबाई केरकर 1992 में जन्मी थी, उनका जन्मदिन जयंती आज मनाई जाती है। भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका रही। 1939 में प्रकाश मेहरा का जन्म हुआ, हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्माता निर्देशक, जिन्होंने अंजीर, जंजीर और शराबी जैसी शानदार फिल्में बनाई थी।

और 1908 में ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी भी हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने इस दिन प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। और भी क्या क्या हुआ कार्यक्रम में आगे करेंगे बात। फिलहाल एक और गीत का समय हो चला है।

क्या सुंदर सितार वादन है। यही इंस्ट्रूमेंटल्स इन गीतों की खूबसूरती है। आशा भोसले की मखमली आवाज, फिल्म का नाम सावन की घटा।

सावन की घटा फिल्म की का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। जी हाँ, प्यार से तो कोई दिल की बातें कह गया है, लेकिन क्या इस प्यार की अहमियत आज की युवा पीढ़ी को है? हम बात तो इसी पर कर रहे हैं ना, लेकिन साथ में अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे आज की तारीख का महत्व। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रॉक दिवस आज हम मना रहे हैं। ये दिन भूविज्ञान और हमारे जीवन में चट्टानों और खनिजों के महत्व को समझने के लिए मनाया जाता है। लेकिन आज इन चट्टानों को हमने किसी और चीज़ के साथ जोड़ दिया है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है पूरी कि आप उसको भी एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय टाउन क्राइयर्स दिवस भी आज ही है, जुलाई के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, जो कि पुराने समय में मुनादी करने वाले यानी संदेशवाहक लोगों के सम्मान में मनाया जाता था। और एक बात और बता दूं आपको, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत भी आज ही की तारीख में हुई थी, 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में कंप्यूटर वैज्ञानिकों की एक ऐतिहासिक कार्यशाला शुरू हुई थी, जिसे आधिकारिक रूप से AI का जन्मस्थान माना जाता है। और इसी आयोजन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा गया था। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है हमारी जीवन में, वो तो हम जानते ही हैं। और मैं सच बताऊं कि कल भी हमने एक ऐसी चीज़ ठीक की है इसी AI के माध्यम से, मेटा AI से पूछ करके, कि मतलब अब कहने को तो आप लोग के सोच सकते हैं कि भाई अपना दिमाग नहीं लगाया, बहुत लगाया अपने दिमाग से, जितना हम कर सकते थे हमने सब कुछ किया। लेकिन फिर जब हमारे हाथ खड़े हो गए तो हमें लगा कि अब कहीं दूर लेकर के अगर हम जाएंगे इस चीज़ को तो शायद पता नहीं कितना समय लगे और पैसा भी लगे। आज के समय में पैसे की भी तो बहुत ज़रूरत होती है, तो और उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है समय की, क्योंकि जो समय है वही पैसा है, ऐसा भी कहा जाता है ना कि समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हमने सोचा चलो घर से ही ट्राई कर लेते हैं, और उससे पूछ करके वो चीज़ हमने घर पर ही ठीक कर ली। इसके अलावा हमने अपने ऑफिस में भी बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि हम AI से पूछ करके ठीक कर लेते हैं। जैसे हमारा कभी लैपटॉप ख़राब हुआ तो हम वो भी अगर हो सके और वहाँ से अच्छा रिस्पांस आ जाए तो हम कर ही लेते हैं। तो ऐसा ही एक वाक्या शशि के साथ भी हुआ था, जो कि मेरे चैनल पर है, वहाँ पर रखा हुआ एक छोटा सा रील के रूप में आप जा कर के देख सकते हैं। और अभी भी हम स्टक डाउन हो गए हैं किसी चीज़ में, जो कि हमारे कंसोल के साथ हुआ है। जब आप लाइव देखते हैं हमें तो हमारे सामने में आपको एक बटनों से भरा हुआ एक बॉक्स दिखाई देता होगा पड़ा हुआ, और उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, जिससे कि हम इस समय जूझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते वो भी ठीक हो जाए। क्या है, आप लोग तो अपने रेडियो सेट्स पर हमें बड़े आराम से स्मूथली सुनते हैं, और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि यहाँ से सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक जाए, आपके कानों तक बड़ा प्यारा प्यारा पहुँचे। लेकिन हम यहाँ पर कितनी जद्दोजहद कर रहे होते हैं, किस किस चीज़ों के साथ हम जूझ रहे होते हैं, वो केवल हम ही जानते हैं। आपके इन सारे कार्यक्रमों को स्मूथ बनाना और आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत मेहनत होती है, यहाँ पर जितने भी हमारी पूरी टीम है उन सभी टीम मेंबर्स की। क्या है, बात हम AI की कर रहे थे और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और फिर से सुनवा देते हैं आपको एक गीत, और गीत के बाद फिर आ जाएंगे हम अपनी युवा पीढ़ी पर।

और ये एक क्लासिकल संगीत आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है जो मैंने अपनी सूची में रखा है। सांझ और सवेरा फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं।

सांझ और सवेरा फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आपने सुना। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे युवा पीढ़ी की नज़र में क्या है आजकल रिश्तों की अहमियत। तो बात तो हमने पहले भी बहुत सारी कर ली, लेकिन उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं।

आधुनिकता के नाम पर माता पिता को ओल्ड एज होम और बीवी को कोर्ट का रास्ता दिखाया जाता है, तो ये तरक्की नहीं है, तन्हाई का लाइसेंस है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़कियाँ कुछ कम हैं, आजकल तो वो भी बढ़ चढ़ करके सामने आ रही हैं, आपको पता ही है, देख ही रहे हैं आप सब कुछ। पर अगर ज़िंदगी से खनक चली गई तो खालीपन रह जाएगा। रिश्ते तब तक नहीं बचेंगे जब तक हम मेरी स्पेस और तेरा साथ के बीच का दरवाज़ा बनाना नहीं सीख लेते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण या फिर यूं कहूँगी बहुत डरावनी चीज़ शुरू हो गई है, डैडी सिंड्रोम या फिर संगठित वसूली। कैसे होती है आइए समझते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों आजकल महानगरों में एक नया दौर शुरू हुआ है, युवा लड़के लड़कियां नौकरी या फिर व्यवसाय जैसी एक्टिंग करते हैं या कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में दाल आटे का भाव जब उनको पता चलने लग जाता है तो फिर वो सोचते हैं कि थोड़े से समय में ही हमें ज़्यादा कैसे मिल सकता है, तो फिर अब क्या किया जाए। अपने घर से ये कहकर आए थे कि करियर बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो तो हो नहीं पाया, वापस जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग, ये जो बच्चे हैं युवा, ये ऐसे रिटायर्ड अकेले NRI या फिर तलाकशुदा या हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें कि जो कि अकेले हैं, तन्हा हैं, और जिन्हें ये पा कहते हैं या फिर पापा कहते हैं या फिर डैडी बुला सकते हैं, और भावनाओं के नाम पर उनके साथ खेला जाता है। पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करके जो बाकी जो कुछ भी बचा है वो भी उनसे हथिया सकें, इनका पूरा पूरा ये इनकी कोशिश होती है। और ये बीमारी सभी महानगरों और बड़े शहरों में बढ़ रही है। एक आधा केस तो मैंने यहाँ पर भी देखा था कुछ सालों पहले कि ऐसा यहाँ पर भी हुआ, तभी मुझे एकदम से याद आ गया। रॉकेट की रफ्तार से ये प्रॉब्लम फैल रही है। 2020 से लेकर 2026 के बीच में मुंबई पुलिस के डाटा में ट्रेंड देखा गया, हनी ट्रैप, इमोशनल फ्रॉड, एक्सटॉर्शन, तरीके वही होते हैं जाने पहचाने से युवा लड़की या फिर महिला की 45 से लेकर के 70 साल के पुरुष से दोस्ती हो जाती है, और वो मतलब बातचीत भी ऐसी होती है कि उनको बिल्कुल शक भी ना हो, अंकल आप पापा जैसे हो। इमोशनल एंगल फेंका जाता है, फिर प्राइवेट चैट्स, वीडियो, गिफ्ट्स के रिकॉर्ड, और बाद में आपकी पत्नी को बता दूंगी सोशल मीडिया पर डाल दूंगी कह करके वसूली की जाती है। और दोस्ती के 3 से 8 महीने के पहले समय में ही ये पैसा मांगा जाता है, मतलब उतने इतना ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं वो, क्योंकि उन्हें तो फास्ट मनी बनाना है ना, जल्दी जल्दी ये सब कुछ करना है। बस एक व्यक्ति फंसा और चुंगुल में आ गया, लोक लाज के डर से अगर वो कुछ बोला नहीं तो फिर उससे पैसे निकलवाने के बाद अगले की तैयारी। और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर और कई तरह के बहाने होते हैं, जैसे कि इमरजेंसी पड़ गई है, माँ बीमार है, भाई की फ़ीस चाहिए, मकान मालिक घर से निकाल रहा है, मैं किराया नहीं दे पाई या दे पाया, और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू। मतलब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, अंकल आप मेरे डैडी जैसे हो, मुझे कभी प्यार नहीं मिला, फिर राखी बांधना और व्यक्तिगत जानकारी लेना, ऐसे इस तरह के बड़े सारे स्वांग होते हैं, जैसे उससे बड़ा तो कोई उनका हमदर्द है ही नहीं। उम्रदराज दराज जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मैं इसको संभाल लूँगा, कोई बात नहीं, चैट में आई लव यू पा को बाद में पा काट करके दिखाया जाता है और फिर डिमांड शुरू कर दी जाती है। नॉर्मल बात को इंटीमेट एंगल से एडिट कर दिया जाता है, साथ की सेल्फी, रूफ ऑफ अफेयर, मुझको 5 लाख चाहिए वरना आपकी वाइफ को सब भेज दूंगी, सोसाइटी ग्रुप में डाल दूंगी, मीटू कर दूंगी। ये तो लड़कियों की बात है, लेकिन लड़के भी कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। और जो 92% लोग होते हैं पीड़ित होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं,
वो ये सोचते हैं कि भैया इज्जत चली जाएगी, FIR नहीं कराते हैं, किसी से इस बारे में बात नहीं करते हैं, तो चुपचाप से हम इनकी डिमांड को पूरी कर देते हैं। अब आगे आने वाले भविष्य में क्या क्या संकेत हैं, क्या क्या खतरे हैं, इस पर भी बात जरूर करेंगे। फिलहाल एक और गीत ले लेते हैं हम कार्यक्रम में। अब ये भूलिएगा मत कि हम आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर फ़ोन नंबर है हमारा 7018117091। फ़ोन नंबर आप लोगों को पता है, लेकिन आप देखिए ना, करते नहीं हैं फ़ोन, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है हमें यहाँ से।

0: आदमी और इंसान फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। तो श्रोताओं, जैसे कि हम आपको सुबह से फ़ोन नंबर तो बता ही रहे हैं और कुछ श्रोता हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, आइए जानते हैं कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या बात अपनी रखना चाहते हैं हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं इंदु बोल रही हूँ, सिद्धवाड़ी से।
0: इंदु जी, सिद्धवाड़ी में रहते हैं आप?
1: हाँ जी मैम।
0: अच्छा इंदु जी, क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो आपका स्वागत आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।
1: थैंक यू मैम
0: जी, बताएं।
1: मैम, मैं जैसे परसों जू में गई थी गोपालपुर।
0: अच्छा,
1: उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जैसे मैं उधर गई तो मैम मुझे कुछ ना उधर अच्छा नहीं लगा। जैसे पहले हम गए उधर गिद्ध का और वो अन्य पक्षी थे, जो बड़े बड़े पक्षी थे, बाज वगैरह, तो उनके जो केस थे वो बिल्कुल छोटे छोटे थे। जैसे गिद्ध का तो बिल्कुल ही छोटा था।
0: अच्छा, पिंजरे।
1: हाँ जी, उनका जो केस है वो बिल्कुल छोटा लगा मुझे। तो मैंने बोला कि मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी कि जैसे हम मैंने वो थोड़ी देर के लिए खुद को उनकी जगह पर रख के सोचा मैंने। तो मैंने कहा जैसे हम थोड़ी देर में ऐसे हमें कोई बंद करके रखे, या हम पूरी तरह से हमने अगर लेटना चाहें तो पूरी तरह अच्छे से लेट ना पाए तो हम पर कैसे बीतती है, हम पर क्या गुजरती है। उस टाइम मैंने ये चीज मैंने नोटिस करी। मैंने बोलते इनके साथ हम कभी ना कम हम शोषण कर रहे हैं। ये जो ये मतलब जू वाले हैं, ये तो चलो अपना इनकम का सोर्स के लिए, ये किसी के मतलब हम शोषण तो नहीं कर सकते ना। जैसे ये इनका तो अपना इनकम सोर्स है, लेकिन इसके लिए हम किसी बेजुबान के साथ गलत कर रहे हैं ये। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं तो ये विचार कर रही कि जैसे ये तो पक्षियों की जरूरत ही नहीं है उधर रखने के लिए।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, पक्षियों को तो रखना है क्योंकि ये खुले आसमान में देखो मैम कितने अच्छे, कितने मजे से ऊंच अपनी रफ्तार में दौड़ते हैं, कितना अच्छा लगता है खुले आसमान में। हर किसी को अपने अपनी जैसे हम आजाद हैं वैसे ये भी आजादी के हकदार हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा मैंने देखा, मैं गई आगे जहाँ पर सांबर रखे थे, सांबर काफी ज्यादा है उधर, तो उधर ना बड़े ही ज्यादा गंदी स्मेल चल रही थी। हम जैसे हम गुजरे वहां से तो वहां से गुजरना मुश्किल हो रहा था।
0: अच्छा,
1: तो इतनी ज्यादा स्मेल थी। और हाँ, वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे गए वो भी उधर ना नाक और मुंह ऐसे कवर करके जा रहे थे। वहां पर सभी यही बोल रहे थे बड़ी बैड स्मेल है, बैड स्मेल है, उधर हर कोई यही चीज बोल रहा था। और जब उधर देखा तो मैम बिल्कुल ना तो वो गोबर में बैठे हुए, तो मुझे वो चीज बड़ी गंदी लगी कि ये चीज गलत हो रही है उनके साथ। कि अगर रखे हैं तो फिर साफ सफाई के और जगह का पूरा ध्यान देना चाहिए ना, हमें पूरी फैसिलिटी देनी चाहिए उनको।
0: हाँ जी इंदु जी, बहुत सही बात आपने की है और आप जानवरों का दर्द जो है वो समझ रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वहाँ पर कोई सजेशन रजिस्टर रखा है, कोई इस तरह का कोई रजिस्टर जिसमें कि आप कोई सजेशन दे पाएँ या फिर कंप्लेन कर सकें, वहाँ पर लिख सकें कि आपको यहाँ पे क्या अच्छा नहीं लगा या क्या अच्छा लगा, इस तरह का कोई रजिस्टर वहाँ पर रखा गया है? क्योंकि
1: मैंने तो इतना नहीं ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम थोड़ा ऐसे जल्दबाजी में थे हम भी, और थोड़ा सुबह निकले हुए थे, सुबह से बड़ी जगह घूमे हम, तो थोड़ा सिर घूम गया था। तो बस मैंने फटाफट निकलने की करी, हमने बोला फटाफट घर चलो आप। पर वहां पर ये दो चीजें मैंने बड़ी नोटिस की थी, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, जो जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो उनको बांध के रखा है हमने, और जो खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, वो गलत लगी मुझे वो चीजें, एक दो चीजें ना
0: जी। लेकिन क्या आप इसके बारे में कोई सजेशन अगर आपके पास है तो देना चाहेंगी?
1: मैम, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे अब देखो ना वहाँ बनखंडी में भी बन रहा है जू, एक बड़ा 233 हेक्टेयर पर बन रहा है, वो काफी वहां पर काफी स्पेस है। मतलब या तो ये बंद कर देना चाहिए या फिर इन पक्षियों को जो है आजाद कर दो। उधर भी बन रहा है तो उधर भी छोड़ सकते हैं ये।
0: हाँ, वहाँ पर भी मर्ज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं
1: जी,
0: और
1: जी।
0: यहाँ पर तो वैसे ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती ही हैं यहाँ की कि इस तरह से होता है। अब थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए, साफ़ सफाई तो हर किसी को चाहिए है। हम जब पक्षियों को खाना भी डालते हैं ना सुबह छत पर भी, तो उस जगह को भी साफ़ करके डालते हैं, जो उनके पीने वाला बर्तन होता है पानी वाला उसको भी साफ़ करके डालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तिलसी जम जाती है ना बरसातों में।
1: जी मैम,
0: तो अगर वहाँ पर वो स्टाफ है तो स्टाफ को अपना काम ईमानदारी से करना ही चाहिए, ये तो आपने सही बात कही है।
1: और अब तो मैम टिकट भी काफी बढ़ा दी उन्होंने, 60 और अडल्ट की 60 और बच्चों की 20 रुपीज कर दी है उन्होंने।
0: हाँ, अगर चार्जेस इतने ज़्यादा हैं विजिटिंग आवर्स के, और कब से कब तक वो आपको अलाउ करते हैं अंदर? कितने बजे तक?
1: मैम शायद मॉर्निंग, उसमें समर का और विंटर का अलग अलग टाइम है।
0: जी,
1: मैं ख्याल गर्मियों का देखा था मैंने, शाम 5 बजे तक क्या है सुबह से। हाँ
0: तो उम्मीद
1: जी,
0: करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ये बात जो है उन तक पहुंचे किसी तरह से।
1: बस मैम मैं यही चाहती हूँ कि जो पक्षी है ना उनको तो आजादी कर देना चाहिए, क्योंकि पक्षियों को तो हम आसमान में देखते ही, हर कोई देखता ही है।
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: आप जब बच्चों को दिखाना ही चाहते हो तो जरूरी थोड़ा ना कि जू में ही दिखाएं। बच्चों आजकल इंटरनेट पे क्या नहीं देख रहे हैं बच्चे, हर चीज
0: हाँ
1: सामने आती है। तो ये सब जरूरी नहीं है कि हम जू में देखें। क्यों हम किसी के एंटरटेनमेंट के लिए किसी मेजबान को ऐसे हरासमेंट करना, वो अच्छी नहीं लगी मुझे बात
0: लेकिन एक
1: बिल्कुल भी।
0: बात ये भी तो सोचिए ना कि आप भी तो टिकट खर्च करके जू में गए ही थे, आखिरकार तो
1: हाँ
0: कुछ
1: जी
0: देखने गए ही होंगे ना वहां पर। तो
1: हाँ
0: आपका
1: जी
0: क्या एक्सपेक्टेशन था कि आपको क्या दिखे, और आपको क्या जो एक्सपेक्टेशन था वो दिखा, या मतलब आपका तो मन ही खराब हुआ, आप तो बता ही रहे हैं ना।
1: हाँ जी मैम, बस मुझे पक्षियों को लेकर उनको और उनको सांबर को जब गंदी जगह देखी ना वो, तब मेरा मन खट्टा हो गया था। मुझे बड़ा बुरा लगा उनके
0: हाँ
1: लिए।
0: जी, हाँ जी जी आप वाकई में एक सेंसिबल पर्सन हैं जो कि पशु पक्षियों के लिए भी इतना दर्द का भाव अपने मन में रखते हैं। इंदु जी, इसी
1: जी
0: तरह से आप हमारे साथ और भी जुड़िएगा कार्यक्रमों में और अपनी बात रखिएगा। धन्यवाद
1: जी मैम, मैम लास्ट में एक बात करना चाहती हूँ आपसे
0: जी।
1: कि ये जो रेडियो में बड़ा अच्छा प्रोग्राम देते हैं आप सभी, इसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। क्योंकि हम जो है ना किसी भी स्ट्रेस में हो या किसी भी टेंशन में हो तो आपका प्रोग्राम सुनते हैं। किसी को हम जो रेडियो हमारा चला होता है सुबह से लेकर शाम तक, तो हम ना बिल्कुल स्ट्रेस लेस हो जाते हैं। तो
0: अच्छा,
1: इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे प्रोग्राम देते हो और बहुत मोटिवेशन करते हो आप सब हमको।
0: आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर आप इतने ध्यान से हमें सुनते हैं। तो कार्यक्रम कौन कौन से सुनते हैं, पूरा दिन
1: मैम
0: लगा रहता
1: पूरा
0: है?
1: सुबह से शाम तक पूरे सुनती हूँ मैं
0: तो 12 बजे
1: प्रोग्राम।
0: भी कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं
1: जी
0: यहाँ
1: जी
0: हमारे
1: मैम
0: यहाँ से, और शशि को भी सुनते हो?
1: जी बिल्कुल, हम कॉल भी करते हैं सुनते भी हैं।
0: हाँ, शशि इस वक्त लाइव भी है फेसबुक पेज से
1: जी मैम
0: और आपकी जो बातचीत हो रही है वो भी हम लाइव कर रहे हैं,
1: जी
0: लोग सुन रहे
1: मैम
0: हैं, उसको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। खैर, आपको तो नहीं देख पा रहे हैं,
1: जी
0: पर कभी आपने सोचा नहीं कि देखिए इतने पास में आप रहते हैं सिद्धबाड़ी में, कभी यहाँ पे
1: जी
0: विजिट कीजिए आकर के।
1: जी मैम जरूर
0: हाँ जी, ज़रूर आइएगा जी
1: जी जरूर, आपने बुलाया तो जरूर
0: जी
1: आऊंगी।
0: थैंक यू। ओके
1: वेलकम जी। ओके
0: ओके जी,
1: मैम,
0: सुनिए अब
1: थैंक यू
0: कार्यक्रम का
1: मैम।
0: अगला गीत। तो ये थी इंदु, इंदु जी जिन्हें कि हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, और इन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात कही है, सो आप सभी ने सुन ही ली है खैर कार्यक्रम से। और अब हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं।

कितना प्यारा सा गीत है ना, आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। जुर्माना फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर की आवाज। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे आज की युवा पीढ़ी, ये जो रिश्तों की उन्होंने बैंड बजा के रखी है ना आजकल, उसके बारे में। तो हमने आपसे कहा था कि भविष्य में क्या क्या भी हो सकता है, तो लड़के या लड़की को दोष देकर के बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सवाल ये है कि 60-70 साल का आदमी 20 साल की बेटी या बेटा क्यों पाल रहा है? ये रिश्ता ज़रूरत से शुरू होकर के वसूली पर ख़त्म होता है। इसकी ज़रूरत ही क्या है, अपने बच्चों से बनती नहीं है, लेकिन बाहर कोई चीज़ें तलाशी जा रही हैं। एक नए कानून में तो 7 साल तक सज़ा का प्रावधान भी है, जो जुलाई 2024 से लागू है, पर ब्लैकमेलिंग को साबित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लड़की होने का फ़ायदा भी मिलता है कई जगह पर। अब तो कानून में बहुत सारा सुधार आ गया है, अब हम ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी साबित कई जगह पर कई सारी चीज़ों को करना मुश्किल हो जाता है। और एंटी एक्सटॉर्शन हेल्पलाइन 103 पर सीनियर सिटीजन ब्लैकमेल अलग कैटेगरी होती है, होना ये चाहिए कि नाम गुप्त होना चाहिए, तुरंत FIR और फास्ट ट्रैक कोर्ट, 6 महीने में ट्रायल हो, कन्विक्शन रेट 6-40% आ जाएगा, तो डर ज़रूर बैठेगा। और लंबा चलने का तो सवाल ही नहीं, खुश रहने का सवाल है। मतलब रिश्ता अगर लंबा चले तो वो ज़रूरी है, और उसमें आपको खुशी भी मिले। दोनों मॉडल में औरतें ही पिट रही हैं, बुज़ुर्ग पिस रहे हैं, अंकल सेकंड जवानी में लुटा रहा है। पुलिस कहे सबूत लाओ, ठग कहे इज्जत लूट लूँगा, कानून को दांत दो 10 साल जेल। प्रॉपर्टी नीलाम, 90 दिन में पैसे वापस, जब तक ठग की अम्मा थाने में नहीं रोएगी, बुजुर्ग का चैन वापस नहीं आएगा। और जो तो ये था आर्टिकल पूरन चंद सरीन का। जी हाँ, इनको क्रेडिट देना हम कैसे भूल सकते हैं। और अब कार्यक्रम में जाते जाते आप सभी के लिए ये गीत, जैसे हमने कार्यक्रम में बीच में शुरुआत की थी ना कि बरखा बैरन, बरखा रानी ज़रा थम के बरसो, अब यहाँ कहा जा रहा है बरखा बैरन ज़रा जम के बरसो, कि मेरा दिल भर वापस जा ना पाए इतना तुम बरसो, लेकिन भैया हमें जाना है, भाई हमें जाने देना, वैसे बारिश बाहर हो नहीं रही है, जहाँ हो रही है वहाँ के लिए। जी अब कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है, मुझे दे दीजिए इजाज़त, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: करण कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर हो गई। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट, टेस्ट। टेस्ट।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में

0: महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
0: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
2: सुनो, मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
1: क्यों, क्या हुआ?
2: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
1: हाँ?
2: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
1: हाँ?
2: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
1: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
2: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूँ सागर और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। इस कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुँचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे के जो उद्देश्य है वो है आप सभी लोगों को एक जागरूक नागरिक बनाने, आप लोगों के बीच में जागरूकता पहुंचे कि जो ऑर्गन है, जो उनका डोनेशन है, वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है, कितनी अहम भूमिका वो निभाता है जब हम बात करते हैं जीवन की। क्योंकि देखिए, टाइटल से आप सभी लोग समझ गए होंगे, जीवन यकीनन एक अनमोल उपहार है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ दुविधाएं आ जाती हैं। अब दुविधाएं तो किस रूप में किसके समक्ष आ जाए किसी को नहीं पता होता, लेकिन जब आ जाती हैं तो उनसे हम सभी को जो है डील करना होता है। तो हमारे यहाँ पर ऐसे हीरोज होते हैं, ऐसे वॉरियर्स होते हैं जो उन दुविधाओं से लड़कर आगे आए होते हैं, तो उनका इंटरव्यू हम यहाँ पर करते हैं अपने सेगमेंट में और उन लोगों से जानते हैं ज्यादा से ज्यादा हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में। और ये मेजरली होते हैं हमारे जो रेसिपिएंट्स होते हैं, यानी कि जिनको वो ऑर्गन्स प्राप्त हुए होते हैं, और डोनर जो उन ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं। आज हमारे बीच एक और बहुत ही खास मेहमान है, हमारे शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर मनीष भारद्वाज। अगर मनीष जी के बारे में आपको बताएं तो 45 वर्ष जो है इनकी आयु है, एक बिजनेसमैन है प्रोफेशन से, एंड इसी के साथ अगर बात करें तो किडनी रेसिपिएंट है, यानी कि इनका किडनी फेलियर हुआ था, किडनी इनकी जो है वो ट्रांसप्लांट हुई थी। 16 वर्ष बीत चुके हैं, 2008 की बात हो रही है जब इनके साथ ये हुआ था। तो आइए विस्तार से समझते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे इन्होंने कोप अप किया। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे मनीष जी का। मनीष जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में।
3: थैंक यू जी।
2: मनीष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी अभी की दिनचर्या के बारे में, अभी की जिंदगी के बारे में, कैसा जीवन चल रहा है, क्या दिन भर का रूटीन होता है आपका?
3: सर, ऐसे होता है कि सुबह मैं उठता हूँ सबसे पहले 6 बजे
2: जी,
3: उसके बाद मैं जाता हूँ जिम। रोज मैं जिम जाता हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ अपना खुद, ट्रेडमिल, साइकिलिंग और थोड़ा बहुत वेट भी मतलब करता हूँ वहाँ जाकर, 1-1.5 घंटा वहाँ लगाता हूँ रोज। उसके बाद घर आ जाता हूँ, उसके बाद अपनी मेडिसिन वगैरह, खाना वगैरह खा के ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैं अपने ऑफिस चले जाता हूँ 10:30। फिर उसके बाद मैं लंच पे आता हूँ, फिर शाम को डिनर, और शाम को अगर टाइम मिलता है तो बैडमिंटन और या साइकिलिंग में एक चीज मैं जरूर करता हूँ।
2: ओके, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी आपकी चल रही है, एक आम जीवन जो हर एक इंसान का होता है वही आपका चल रहा है।
3: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है लाइफ।
2: और जीवन में खुश हैं आप?
3: बिल्कुल जी, बहुत खुश हैं, परमात्मा की बहुत कृपा है।
2: अब मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना चाहूंगा, आपके अतीत की तरफ हम चलना चाहेंगे, और मैं जानना चाहूंगा कि जब वो सब हुआ था, जो आपका किडनी फेलियर हुआ था, वो क्या सिम्टम्स आपके निकल के सामने आए थे, कौन सा वो दौर था, क्या आप किया करते थे उन दिनों?
3: सर, ऐसे था कि वो टाइम था बहुत हार्ड हमारे लिए, वो 2008 था एक्चुअली ईयर। तो क्या था, बीपी की प्रॉब्लम थी मुझे, एक्चुअली मुझे लग रहा था, मुझे पता नहीं था कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तब बहुत यंग था, 29 ईयर्स ओल्ड था, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। क्या होता है कि जब पता नहीं था तो ऐसे ही फिर कोई मेडिसिन वगैरह ली, उसका मेडिसिन का रिएक्शन हो गया मेरी बॉडी पे, तो बाद में मुझे पता लगा कि मेरा किडनी फेलियर हो चुका है। उसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि आपका मतलब कटन लाइन वगैरह ये ब्लड लीजिए, ये आपको बढ़ गया। और आपको मैं खास बात बताता हूँ कि 29 ईयर्स तक मैं ये नहीं

0: इन्फेक्शन की दिक्कत थी, आपने कहा कि मैं मेडिसिन ले ली ऐसे ही कोई,
1: हाँ जी,
0: तो क्या आप सिंपल एक केमिस्ट शॉप पर गए और आपने एक मेडिसिन खरीदी?
1: केमिस्ट शॉप से मेडिसिन ले ली ना, बुखार था, टेम्परेचर था, मेडिसिन ले ली वहां से जाके, तो मैंने वहां जाके ली, तो मुझे जो मेडिसिन खाई मैंने तो मुझे वॉमिट आ गया एक्चुअली।
0: Okay.
1: तब मुझे पता चला, फिर मुझे मेरा टेम्परेचर टूट रहा था, तो मुझे फिर डॉक्टर ने टेस्ट बोलिए करने के लिए कि आप टेस्ट कराओ, ये CBC RFT या LFT ये वगैरह कराओ सारे। तो मैंने कराया तो उसमें मेरा कटने 5.2 आया हुआ था, तब फर्स्ट टाइम पे 5.2 आया था, तो ब्लड यूरिया 112 था शायद मेरा तब। तो उसके बाद पता चला था, डॉक्टर ने बोला था मेडिसिन आपकी इसका लड़के का ऐसे हो गया, मेरे फादर साहब को बोला था उन्होंने कि इसका ऐसे ऐसे किडनी फेलियर हो गया है। फिर सर हमने DMC जहाँ लुधियाना में गए थे, यहाँ पंजाब से पूरे DMC लुधियाना आए थे, तो उसके बाद DMC लुधियाना में डायलिसिस वगैरह हुए एक महीना। फिर हमने वहाँ दिल्ली में सरगंगाराम हॉस्पिटल में जाके अपना, मैं डॉक्टर तनीज खोले वहाँ होते थे तब, तो उनसे अपना करवाया सारा इलाज, तो डॉक्टर जौहरी ने मेरा ऑपरेशन किया था एक्चुअली, अभी वो मेदांता में मेरे ख्याल से।
0: ओके, तो अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आम जन में समस्या देखने को मिलती है कि कोई भी दिक्कत होती है, कहीं शरीर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है या बुखार होता है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बिना किसी जांच के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए सीधा एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कुछ दवाइयां लेते हैं, खा लेते हैं और उन्हें लगता है वो ठीक हो गए। अब आप बहुत अच्छे से इस बात को बता पाएंगे क्या
1: सर, मेरे से बड़ी एग्जांपल क्या है बताओ आप, इससे बड़ी एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पे ये बात बीती हुई है खुद, मैंने जो काम किया, मेरा BP की प्रॉब्लम थी, मुझे टेम्परेचर हुआ, मैं वहाँ मेडिसिन लेने गया केमिस्ट शॉप पे, तो मुझे वॉमिट आ गई, मुझे नहीं वो ने हार्ड मेडिसिन दे दी, मेरे अंदर पहले ही प्रॉब्लम थी अंदर, मुझे पता नहीं था, तो मेरा मेरे केस बन गया देखो इतना बड़ा। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ सब लोगों को कि सारा अपना जाँच डॉक्टर से कराएं, पहले अपना डॉक्टर से जाँच कराएं, जो डॉक्टर कहता है वो करें, उसके बाद ही मेडिसिन को लें, ऐसे नहीं कोई डोटू ले लो, पेन किलर ले लो, जिंदा डोरा इस चीज़ में कुछ ले लो, ऐसे नहीं करना, आराम से अपना इलाज करना चाहिए मतलब डॉक्टर से।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन दिनों आप कोई स्पोर्ट्स खेला करते थे?
1: सर तब भी बैडमिंटन खेलता था।
0: अभी भी आप बैडमिंटन खेलते हैं?
1: अभी भी खेलता हूँ
0: जी,
1: जब टाइम लगता है तब खेलता हूँ मैं, मतलब आज इधर जैसे जाऊंगा तो खेलने चले जाऊंगा, कल गया कल चले गया ऐसे जाता हूँ, पर सुबह का टाइम पक्का है 1.5 आवर वो फिक्स है जिम में मेरा।
0: जी जी,
1: चाहे मैं घूम के आ जाऊं जिम में, चाहे मैं घूम के आ जाऊं जिम में, पर मैंने जाने जाना होता है।
0: आएंगे सर, आपकी इस दिनचर्या के ऊपर भी हम आएंगे, मैं थोड़ा सा आपके उस वक्त को और अच्छे से समझना चाह रहा हूँ, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं उन तक बहुत अच्छे से वो जानकारी पहुंच पाए कि क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं जिस वजह से ये नौबत हमारे सामने आ जाती है। तो और आप कुछ बता सकते हैं हमें, आपकी उस दिनचर्या में, आपके उस जीवन में कोई समस्याएं हो ऐसी, या कुछ गलतियां आपसे हुई हो जो आप हमारे लिसनर तक पहुंचा सके?
1: खाने पीने में प्रॉब्लम थी, खाने पीने में घर का खाना नहीं खाते थे, घर का बाहर का खाना ज्यादा खाते थे, कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते थे, सब गलतियां ही लाइफ की, तब पता नहीं था ना कि अंदर क्या हो रहा है बॉडी में। मैंने आपको पहले भी बताई ये बात, मुझे 29 ईयर तक मेरे घर में, घर पे भी मेरे फादर साहब या मेरे मदर को, किसी को 29 ईयर जब मुझे प्रॉब्लम आई, उनको यही पता नहीं था कि लाइफ में ये बॉडी में कोई किडनी भी होती है किसी में, लीवर हार्ट हमने सुना हुआ सब, किडनी किसी ने सुना ही था हमने ना हमारे घर में आज तक, और ऐसी प्रॉब्लम आई किडनी की प्रॉब्लम आ गई।
0: अरे कितनी बड़ी त्रासदी है कि हम लोग अपने शरीर के साथ कितनी नाइंसाफी करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं और कैसी भी जीवन शैली जो है उसको फॉलो कर लेते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, लाइफ में आदमी को हर बंदे को अपने टेस्ट कराने चाहिए, रूटीन टेस्ट कराने चाहिए, अपने 6 महीने या साल बाद या 1.5 साल बाद अपने टेस्ट जरूर कराने चाहिए, बॉडी के ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, उससे पता लगता है क्या हो रहा है। ऐसे लोग करवाते नहीं, डरते हैं कि क्या पता नहीं क्या निकल आना उसमें से, अगर वो अगर भाई निकलेगा तो उसका इलाज हो जाएगा उसमें क्या।
0: जी जी बिल्कुल,
1: पर नहीं लोग नहीं करवाते टेस्ट अपने।
0: जी सर वही,
1: केमिस्ट शॉप से ले लो मेडिसिन, बस डॉक्टर के पास जाना नहीं है, पर्ची लगेगी, बैठे रहना पड़ेगा वहाँ पे जाके, डॉक्टर के पास टाइम नहीं होगा, वहाँ क्या करना है 2 मिनट लगे नहीं, अपने केमिस्ट से मेडिसिन ले लो, और केमिस्ट शॉप वाले को थोड़ी पता है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है, आपकी हार्ट पल्स क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है क्या नहीं, उनका तो वैसे ही बना के बताते फटाफट।
0: बिल्कुल सर, यही एक चीज है, यही एक मुहिम है जो ऑर्गन इंडिया लेकर चल रहा है, ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है जागरूक कर पाए और लोगों के बीच में एक चीज पहुंचा पाए कि हमारा शरीर जो है वो कितना कीमती है, अनमोल है, और जीवन जो है वो भी यकीनन एक अनमोल उपहार। तो सर अब हम आगे आपसे बात करेंगे उसे

0: इसके बारे में जब आपका किडनी फेलियर हुआ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेना चाहेंगे और उस ब्रेक के बाद हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी श्रोतागणों से एक निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
2: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आशा करता हूँ ये ब्रेक में जो संगीत और ये जो भी बातें आपने सुनी आपको पसंद आई। तो चलिए अब अपने इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं। कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। मैं हूँ सागर और इस कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुँचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मिस्टर मनीष भारद्वाज जो अपने जीवन के बारे में आपको बता रहे हैं। 29 वर्ष उनकी आयु जब उनका किडनी फेलियर हुआ था, अभी 45 वर्ष इनकी आयु है, यानी कि 16 साल गुजर चुके हैं उस एक चीज को और एक अच्छा जीवन ये व्यतीत कर पा रहे हैं। अभी तक आपने जाना कि क्या क्या गलतियां इनसे हुई और उन दिनों की जो इनकी वजह से इनका किडनी जो है वो फेलियर। अब हम बात करेंगे उस एक फेज के बारे में। तो मनीष जी अब हमें बताइए, आप जब आपका किडनी फेलियर हुआ था तो कैसे वो एक परिस्थिति थी जो उससे आपने कोप अप किया, कैसे उसके साथ डील किया और कैसे आपको जो है वो किडनी का मैं कहूंगा डोनर मिले, कौन थे वो डोनर, थोड़ा विस्तार से बताइए।
2: डोनर मेरे सर मदर थे।
1: ओके।
2: उन्होंने मुझे किडनी डोनेट करी अपनी, वो भी बिल्कुल फिट है, अभी अपना घर पे है इस समय, बिल्कुल अपना काम जैसे उनके दिनचर्या होनी चाहिए वैसे ही। अभी भी क्या हो रहा था, जब किडनी फेलियर का पता चला तो हमें सारी परेशानी बहुत आ गई घर पे, क्या हो गया जी, क्या हो गया, मतलब होता ही ना घर पे जाते
1: जी, पर जी।
2: उसको फेस किया मेरे फादर साहब ने, बड़ा फिर किस तरह मेरे साथ, मेरे मदर ने बड़ा फेस किया, मेरी वाइफ ने बड़ा फेस किया, सबने फेस किया वहाँ पे। तो मेरी विल पावर मैंने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रखी तब कि नहीं मैंने फेस करना ही करना, जैसे मर्जी, मतलब मैंने गिव अप नहीं करना है। तो मैंने फेस किया, मेरे डॉक्टर दिनेश खुल्लो को बताया इस बात का कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तब मैंने कैसे करवाया था वहाँ पे जाके, नहीं मैंने फेस मतलब फाइट करने करना जो मर्जी हो जाए।
1: सर वो जो फेस था आपके जीवन में उन दिनों, जाहिर सी बात है जब किसी भी इंसान को ऐसे पता चलता है कि उसके शरीर का एक ऐसा अंग है जिसने अब काम करना बंद कर दिया है या फिर कहीं जो अब मृत घोषित कर दिया गया है, जो अब किसी काम करे तो किसी के भी पैरों के नीचे से जमीन जो है वो खिसक सकती है। आपसे जानना चाहूंगा कि आपके ऊपर क्या गुजरी, आपके परिवार के ऊपर क्या गुजरी और पहला वो थॉट क्या था, कहाँ पर आप लोग गए और क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आई।
2: सबसे पहले सर जब ये पता ही चला ना, जब यहाँ फगवाड़ा में से मैं बोल रहा हूँ ना एक्चुअली यहाँ पंजाब से, तो क्या हुआ था जब टेस्ट कराया था तब हमें पता चल गया था कि कटना है, कितना है या ब्लड कितना है। तो उसके बाद जो रिपोर्ट्स हम ले गए ना अपने डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कहा कि इसको फटाफट आप डीएमसी लुधियाना ले। तब वहाँ डीएमसी लुधियाना गए तो वहाँ उन्होंने डॉक्टर साहब बड़े अच्छे थे, उन्होंने बोला डॉक्टर संतोष यार, तो उन्होंने बोला था कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा, ऐसा हो गया था, चलो हमें भी कॉन्फिडेंस आ गया दोबारा, शायद बच गया, मतलब अभी है चांस, किडनी काम कर रही है अंदर। पर उन्होंने अगले दिन मुझे एमआरआई वगैरह कराई तो उसमें मेरी जो किडनी मतलब उसकी लेंथ जो वो शॉर्ट हो गई थी, मतलब श्रिंक कर गई थी किडनी दोनों।
1: ओके।
2: नेचुरली वो फिर किडनी काम करना बंद कर गई, तो उसकी वजह से फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको डायलिसिस कराना पड़ेगा। फिर मैंने उसी रात डायलिसिस कराया, पूरा अवस्था बड़ा पेनफुल था। तो उसके बाद फिर एक वीक के बाद हो रहा था डायलिसिस, तभी फिर मेरे मदर ने कहा कि मैं इसको किडनी दूंगी। फिर हमने अपने सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कराए फटाफट, फिर हमें किसी ने यहाँ से एडवाइस करा सर गंगाराम में कराओ अपना ऑपरेशन। फिर सारे गंगाराम में गए, वहाँ पे तो आपको पता ही भीड़ कितनी
1: जी जी,
2: वहाँ बड़ी मुश्किल से मतलब मिले वहाँ डॉक्टर से, डॉक्टर दिनेश खुल्लर है वहाँ पे थे, तब उनसे बात करी सारी, उनको वो भी बड़े हैरान हुए कि 29 ईयर्स ओल्ड बच्चा आया और कैसे हो गया ऐसे साथ। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट करा, तब भी सर गंगाराम में ऑपरेशन कराया, तब से अभी तक मेरा सारा इलाज वो ही कर रहे हैं। अभी अभी मैं 6 मंथ बाद जाता हूँ उनके पास, मैप्स हॉस्पिटल में आजकल वो सकेत में, अभी भी जाता हूँ, अभी भी जा गया हूँ लास्ट टाइम, अभी जाना है फिर अक्टूबर नवंबर में फिर जाऊँगा रूटीन टेस्ट आफ्टर 2 मंथ से यहाँ कराता हूँ अपने जैसे कराने चाहिए
1: जी। सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगा जब किडनी का जो आपका ये प्रोसीजर हो रहा था किडनी ट्रांसप्लांट का, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे समक्ष खड़ी होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि नया जो अंग हमारे शरीर में डाला जाएगा, नया अंग जो हमारे शरीर में लगाया जाएगा उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी अगर ट्रांसप्लांट की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है एंड हार्ट अटैक हो सकता है, रिजेक्शन ऑफ डोनेटेड किडनी, बहुत सारी चीजें होती है। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी ये तमाम प्रश्न होंगे।
2: सर तब सारे थे और मैं आपको एक किस्सा यहाँ बताना चाहूंगा, जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया आईसीयू में आया ना वापस, तो मेरी किडनी ने बिल्कुल बहुत अच्छा काम करी थी, जो नई किडनी मेरे बॉडी के अंदर डाली गई
1: जी,
2: और 3 डेज बाद क्या हुआ कि वो किडनी बैक कर गई, किडनी काम करना वो भी कम कर गई, मेरा किडनी लेवल फिर बढ़ना शुरू हो गया दोबारा, मतलब पहले नॉर्मल आ गया फिर दोबारा 3.6-3.8 पे पहुंच गया, वो बढ़ना शुरू हो गया और फिर लास्टली वो जो आ गया वो 2 पे आ गया लास्ट किडनी। फिर डॉक्टर खुल्लर ने मेडिसिन वगैरह दी तो फिर वो सही रहा, फिर अब जो भी था परमात्मा की कृपा से। मतलब तब भी बड़ा 21 दिन वो मैं लोग वहाँ रहते हैं, 14 डेज का कोर्स होता है, आपको पता ही होगा जब हॉस्पिटल में रहते थे पहले
1: जी,
2: 14 दिन रहते थे पहले जो आईसीयू होता है, तीन बंदे को इन्फेक्शन वगैरह ना हो कोई, पर मैं 21 दिन रहा हूँ सर उसमें। वो सबसे टफ टाइम था अकेले रहना वहाँ आईसीयू में, अकेले आप अपने बेड पे रह रहे हो अकेले, बहुत बड़ी बात है, और एक ही कमरे में रह रहे हो, उसी के अंदर घूमना है, सब कुछ अंदर ही करना है जो भी करना है।
1: जी जी जी बिल्कुल सर, एक ऐसा फेज होता है मतलब कोई भी उसको इमेजिन नहीं कर सकता है, एक बंद कमरे में।
2: बहुत टफ टाइम था, घर वाले भी आते थे तो वो सिर्फ मिरर से आपको देख सकते थे अंदर, वो आपसे बात नहीं कर सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, सिर्फ देख के चले जाते थे कि ठीक है खाना खा लिया या नहीं खा लिया, बस इशारों से बात होते।
1: लेकिन इस कहानी के दोनों पहलू हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, एक तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर वो मेडिसिन आपने ऐसे ही ना ली होती किसी केमिस्ट शॉप से, या आपकी जीवन शैली में जो भी चीजें दिक्कत बन के आपसे सामने आई वो अगर ना होती तो शायद उन सब चीजों को अवॉइड किया जा सकता था। और दूसरा पहलू ये भी कहता है कि अगर वो फेज आपकी जिंदगी में ना आता तो शायद आपको जीवन का सही मूल्य पता भी ना चल पाता।
2: पता नहीं चलता सर, एक्चुअली यही बात है जो आपने सेकंड लाइन बोली
1: ज्यादा। जी जी जी,
2: एनर्जेटिक से पता ही नहीं था लाइफ कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, अब पता लग रहा है कि लाइफ की वैल्यू कितनी है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ पर आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, मानकर चलिए ये तो चलिए आपकी माता जी जो है उन्होंने आपको किडनी डोनेट कर दी, लेकिन आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको ऑर्गन्स की जरूरत होती है लेकिन उनको ऑर्गन्स नहीं मिल पाते, तो अगर आपको भी किडनी ना मिल पाती तो आपका जीवन कैसे होता, या होता या ना होता, होता तो कितने दिन का होता?
2: 2-4-5 साल का होना था और डायलिसिस होने थे और क्या होना था, उसके अलावा क्या है उसके पास, जहाँ सी ए पेट मिल जाती है और क्या करता है। वह तो जितने डोनर जो बंदा अपनी इच्छा से अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है वैसे इंडियन गवर्नमेंट करना चाहिए कि वो दे सके तो देना चाहिए, जैसे देना चाहिए कोई बात नहीं है, अगर कोई बंदा अपनी मर्जी देना चाह रहा है, अगर उसमें बिजनेस हो रहा है वो गलत है।
1: बिल्कुल सर,
2: बात को किसी भी देना चाहता है, मेरा आप इमोशन अटैच है, मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरे यहाँ फ्रेंड हो मतलब मैं आपको देना चाहता हूँ, तो किसी को खतरा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया में कानून बड़े सख्त है कि ब्लड रिलेशन में दे सकते हैं मदर फादर बस, या भाई या बहन बस।
1: जी जी जी जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो लोग दे सकते हैं उन्हें तो उठ के आगे आना चाहिए, उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा
2: आना चाहिए। और मैं आपके कार्यक्रम की बड़ी करता हूँ प्रशंसा कि ऑर्गन इंडिया अच्छा काम कर रही है, मैं फिर ऑफिस जाके आया था वहाँ पे दिल्ली में, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर जिस लेवल पे जागरूक कराना होना चाहिए उस हिसाब से लोग जागरूक नहीं, अभी भी जैसे पंजाब में, मैं जैसे पंजाब में बोल रहा हूँ, यहाँ लोग नहीं जागरूक, यहाँ लोगों को आइस का पता है कि दान देना है, बस आंखों का पता देना है, किडनी दे देंगे वो हम लीवर दे देंगे, हार्ट दे देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे ऊपर, हम बाहर जाना है स्वर्गों में, क्या हो जाएगा वहाँ जाके हमारे साथ, ऐसे लोग सोचते हैं यहाँ पे, अभी जागरूक नहीं है ना अपने लोगों को, अवेयरनेस नहीं है अभी
1: जी सर, उसी अवेयरनेस को
2: अंगदान महादान है।
1: बिल्कुल सर, और उसी एक महादान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, ताकि जन जन के बीच में जागरूकता पहुंच सके, हम एक कार्यक्रम लेकर आते हैं जीवन एक अनमोल उपहार, हर एक इंसान को हम कोशिश करते हैं जागरूक करने की।
2: सागर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: जी जी।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: तो चलिए अब अपने इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं। कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। मैं हूँ सागर और इस कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुँचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मिस्टर मनीष भारद्वाज जो अपने जीवन के बारे में आपको बता रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके अभी की दिनचर्या, अभी के जीवन के बारे में। दिनचर्या आपने बता दी थी शो की शुरुआत में ही, अभी आपका जीवन उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद से कैसा गुजर रहा है? क्या कोई कॉम्प्लिकेशन आपके सामने आए, क्या कोई चुनौतियां आपके सामने है, या फिर कोई डर होता है अभी, या बिल्कुल खुश है?
2: सर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आती ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है, आती है प्रॉब्लम। मुझे 2011 में प्रॉब्लम आई थी और 2019 में प्रॉब्लम भी आई थी। मैं 4 डेज तभी हॉस्पिटल में रहा था, 4 डेज तब भी रहा था। मुझे प्रॉब्लम आई थी तो मैं मतलब ठीक हो गया, आ गया वापस। मेरा टेम्परेचर नहीं टूट रहा था 2019 में। फिर
1: जी
2: फिर मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए, चलो वहाँ डॉक्टर साहब को पता लग गया क्या प्रॉब्लम, उन्होंने मेडिसिन दी, वो मेडिसिन चली मेरी, मैं ठीक हो। और 2011 में मुझे प्रॉब्लम आई थी, तब मुझे न्यूमोनिया हो गया बड़ा मेजर। तब मैं सिटी सिटी हॉस्पिटल दिल्ली में नगाराम के साइड पे बाहर मेन रोड पे, तब वहाँ एडमिट हुआ था 4 डेज। तब मेरे काफ़ी इलाज वगैरह मेरा तब हुआ था, तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छा मेरा किया था ट्रीटमेंट।
1: जी सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी अगर हमारे शरीर में नया अंग लगाया जाता है तो उसके बाद हमारी इम्यूनिटी को हमें जीरो करने के उसको ताकि वो ना बढ़ पाए, ताकि वो उस ऑर्गन को किल ना कर पाए, कुछ दवाइयां खानी होती है जिसकी बदौलत बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आते हैं। जैसे कि नए नए इन्फेक्शन अगर हमारे सामने आते हैं, हम उनको फेस करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या आप कह सकते हैं कि अभी आप एक बेहद सुखद जीवन जीते हैं? क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद जीवन भी ना।
2: सर मैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हूं, परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है मेरे पे। मैं कई लोगों को देखता हूँ जिनकी कंडी 2-2 साल में नहीं चलती, 6-6 महीने में चलती, 1-1 दिन में नहीं चलती, बेचारे मतलब दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़ता है लोगों को। मेरा टाइम मतलब आज हुआ है ट्रांसप्लांट, 3 दिन बाद डॉक्टर कहता कि नहीं यार आपकी कंडी रिएक्शन कर गई, आपको फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। एक डोनर तो मिलता नहीं, 2-2 डोनर कहाँ से आएंगे बताओ आप।
1: जी जी जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ एक जीवन है, लेकिन हाँ उसमें बहुत हद तक आपका जो आपने बताया कि आपकी जो दिनचर्या है, जब आप जिम जाते हैं, आप जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो बहुत एक अहम भूमिका निभाती है।
2: स्टैमिना सर बनाना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपको कोई मतलब इन्फेक्शन ना हो या टेम्परेचर जल्दी ना हो, उसके लिए आपकी बॉडी का स्टैमिना चाहिए एक्चुअली। कल आपको चलो टेम्परेचर हो जाए तो आपकी बॉडी उसे लड़ सके, फाइट कर सके, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी के लिए 1 आवर या 2 आवर्स देने चाहिए पूरे दिन में। मैं ट्रांसप्लांट पेशेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, नॉर्मल बंदे की नहीं, अपने जो ट्रांसप्लांट लोग हैं, चाहे लीवर है, चाहे किडनी है, चाहे हार्ट है।
1: जी जी मनीष जी, अब हमारा जो शो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो कोई ऐसा खास पैगाम, कोई ऐसा खास संदेश जो आप श्रोतागणों तक पहुंचाना चाहें या जो भी लोग इस टाइम हमें सुन पा रहे हैं उन तक पहुंचाना चाहें तो प्लीज कह सकते हैं आप।
2: सर मैं यही कहना चाहूंगा, अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो बस, बाहर का ना खाओ, अच्छा रहो बस, स्वस्थ रहो बस, अच्छा खाना खाना चाहिए बस। मेरा तो अपना लाइफ का, मेरा लाइफ का अपना खुद का एक्सपीरियंस यही है।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी श्रोतागणों का भी तहे दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये शो जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार, इसको आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया को। मैं हूं सागर और आज हमने मनीष भारद्वाज जी से बात करी जिन्होंने बताया कि 29 वर्ष की आयु में उनको जो है किडनी फेलियर हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या दिक्कतें वो जो है अपने जीवन में फेस कर रहे थे उन दिनों, और क्या क्या गलतियां वो कर रहे थे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि उस एक हादसे के बाद उन्हें समझ में आया कि जीवन यकीनन कितना अनमोल है। तो आशा करता हूँ जो गलती मनीष जी ने करी वो आप नहीं करेंगे, उनकी गलतियों से आप जरूर एक सीख लेंगे। इसी के साथ हम फिर लौटेंगे, फिर लेकर आएंगे एक और नया एपिसोड और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और आप सभी का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम की विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: चल कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चले?
2: थोड़ी देर हो गई।
3: मुझे गिफ्ट नहीं बैलून चाहिए।
2: थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
3: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
4: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
5: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई, अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना, मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई। वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती थी, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। हैं, वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो रंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो रंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

91 दशमलव ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: कल कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चले?
2: थोड़ी देर हो गई। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सबका कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना, मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई। वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। हैं, वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्स पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शतो मैं शशि हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर माटी दी महक ता तो हाँ सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जिड़ा समय या सफर तो हाँ तक रहता है 2 से 3 बजे तक कने जिन्हें श्रोता जो नहीं है पता तिना तक कहाँ जरूर पहुँचाई है कने कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है कने तो हाँ सारे का ही अपना पहाड़ी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम च जिहड़ा कार्यक्रम की खासियत है सही है कि तो हाँ इस कार्यक्रम च पहाड़ी च गलबात करी सकते कने अपनिया जिहड़ा फरमाइशां सभी पहाड़ी जिहड़ा हंदे लोक गीत हैं से सुनी सकते कने कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जिहड़ा हंदा स्टूडियो दा नंबर है सभी तुहां तक पहुँचाई दे न क्योंकि स्टूडियो दा नंबर तुहां तक पहुँचांगे ताई तो तुहां अहां कन्ने जुड़ी सकते कने अहां कन्ने गलबात जिहड़े से जरूर करी सकते। दर्शो तो गलबात करने वास्ते जिहड़ा हंदा नंबर है से तुहां नोट करा मैं तुहां तक नंबर पहुँचाना लगी हो है तो हाँ जरूर पेन कने कॉपी पकड़ी ले आना है या अपना मोबाइल फोन च ही डायल करना शुरू होई होने न डायल करना शुरू होई हो तो नंबर जिहड़ा से जरूर डायल करा नंबर है 701-811-7091 तो इस नंबर पर तो हाँ कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा तो जरूर अहाँ एक ही तुहां तक पहुँच जिहड़ा नंबर है माफ़ करना जिहड़ा नंबर है से तुहां तक पहुँचाई तय कने हुण अहाँ कार्यक्रम दा जिहड़ा आगाज़ है सभी जरूर करना है क्योंकि आगाज़ अगर एक प्यारे दे गीत कन्नै होइयां तो कार्यक्रम दा जिहड़ा सफ़र है ना से बड़ा ही प्यारा लगता है क्योंकि सफ़र हमेशा जैलू गीत संगीत अहां दी गलबात कन्नै जुड़ी आंदा है तो कुथी ना कुथी गीत संगीत ही अहाँ जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते हैं तो जरूर शुरुआत अहाँ करनी है इस प्यारे दे गीत कन्ने तो हाँ सारे भी इन्हें जुड़ी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कन्ने कन्ने अहाँ ये गीत तो हाँ सारे तक पहुँचा देन कन्ने तो हाँ सारे भी इस गीत जो जरूर ध्यान ने सुनना है कन्ने इंजॉय भी करना है क्योंकि इंजॉय करके ताई तो हाँ अपना जिहड़ा तनाव है ती जो दूर करी सकते ताई तो हाँ थोड़ा दे अच्छा जिहड़ा फील है सभी करी सकते अच्छा फील करने वास्ते हमेशा रेडियो गुंजन धर्मशाला कन्ने जुड़ा तो जरूर एक गीत तुहां तक पहुँचा देना।

0: ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपने रेडियो तो शशि कन्ने तो सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे शुरुआत। इसी शुरुआत कन्ने हाँ फिरी ते वापिस आइयो ना अपनी गलबात ऊपर। अजकना जेड़ा दिन है 13 जुलाई 2026 था ये दिन सोमवार था। ये दिन तो हाँ जरूर इंजॉय करा दे उन्हें न कने फिर ते अपनी दिने दी जड़ा शुरुआत है या हफ्ते दी शुरुआत है तो हाँ करी दी होनी है क्योंकि दिने दी शुरुआत हाँ किस प्रकार करते न या किस प्रकार हाँ अपने दिन जो इंजॉय करते न। इसी कन्ने आज हाँ जिड़ा कार्यक्रम च गलबात करनी है सभी जरूर तुहां तक पहुँचानी है कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकते। अजकनी जिड़ा गलबात है सहांदी रहनी है कि असफलता दी जिड़ा सीढ़ी है ना सहां जो कुथी ना कुथी सफलता दी ओर ले करी जाती है। अगर हाँ गलतियाँ करते न तो अपनी गलती ते यहाँ बड़ा कुछ सीख देना। गलतियाँ करी करी ही इंसान अपनी जिंदगी से जड़े से आगे बढ़ता है। कई बार होंदा ना हाँ हमेशा एग्जाम्पल जड़ा तो हाँ तक दिन दे रहन देन। अगर बच्चा गलती करा दे तो से पेरेंट्स कुथी ना कुथी तीस बच्चे जो टोक देन रोक दे भी हैं या तीस बच्चे जो समझाते भी हैं कि इस प्रकार नहीं करना है तो हाँ ये काम इस प्रकार करना है कने से बच्चा तीस गलती जो दोबारा नहीं करता। चलो एक बारी करगा दो बारी करगा त्री बारी से यही कोशिश करता कि ये गलती जड़े से मैं दोबारा नहीं करनी है। तो ये ऊपर हाँ गलबात करनी है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकते। तो सफर दी जड़ा शुरुआत है से ओई होए कन्ने अजकना जड़ा संदेश है सभी जरूर तुहां तक पहुँचाना है। हाँ कई बार होंदा ना कि अपनी जिंदगी जो जड़ा दोष है से देना शुरू होई जांदे पर कहो अपनी जिंदगी जो दोष देना जरूरी है। अगर हाँ अहां दे जीवन च अच्छे लोग होंदे न तो से अहां जो खुशियां देख रही जाते न कने अगर बुरे लोग होंदे न तो से अहां जो अनुभव देख रही जाते न कने इसी कन्ने जेड़ा सबसे बुरे लोग होंदे से अहां जो कुछ ना कुछ सबक जेड़े से जरूर देख रही जाते न। ता जीवन च अच्छे लोग अहां जो क्या सिखाई करी जाते न कि हमेशा खुश रहा खुश रहना अहां दा काम है कने खुद पर विश्वास करना भी अहां दा काम है। तो जरूर अहां जेड़ा टॉपिक है से तुहां तक पहुँचाई था कने तुहां फेसबुक लाइव कने भी जुड़िया कने तुहां सारे जो भी जितने भी लिसनर हैं से फेसबुक लाइव कने जुड़े न या दिखा दे न तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है कने अहां दे एक श्रोता अहां कने जुड़ चुके हो न कर दें तिना कने गल बात। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते शशि जी नमस्कार
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: धन्यवाद जी ठीक है ना
0: जी अहां तो ठीक है जी तुहां ठीक ठाक है ना।

0: वही है, बहुत वही है।
1: जी तोहा कुछ ते बोला दे कने तोहंदा ना क्या है जी
0: हाँ वे सारे का ना गाड़ी है। हाँ
1: जी बड़ी दूर आते बोला दे ना जी
0: जी हाँ जी कहने मेघनाथ मेरा नाम है
1: जी मेघनाथ
0: और
1: जी
0: सारा
1: जी
0: आराम लेना चाहे मारी लेकर सारा बुरी पड़ोगी।
1: फिर ते अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई दी जी तो ये आंदी ना जी जी जी जी ता मेघनाथ जी आज हाँ जिड़ा कार्यक्रम च गलबात करा देन से करा देन कि असफलता दी जिड़ा सीढ़ी है ना से हाँ जो कुछ ना कुछ जरूर सिखाई करी जानती है ना जी। हेलो
0: ना
1: जी जी
0: चोट लगती
1: जी जी जी जी जी तो हमारी आवाज़ थोड़ी कटी कटी की हो दी जी जी जी ता मेघनाथ जी आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके
0: रंग बिरंगा जहाज हाँ
1: जी रंग बिरंगा जहाज सुनने तो हाँ जी
0: जी
1: जरूर तो हाँ तक के गीत पहुँचान देने भजन तो हाँ तक पहुँचान देने जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद जी
0: धन्यवाद थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी तो हाँ दा भी तशु तो हाँ सारे जो ही लेकर ही चल दे ना इसा फरमाइश दी और तो हाँ सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे आप ना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने तुहा सारे ही सुनिया ये प्यारा देया भजन प्यारी दे फरमाइश तो फिर ते अहाँ वापिस आइयो न गलबात उपर कने ये गलबात तुह तक रहनी है 2 से 3 बजे तक तो हाँ सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते तशु तो गलबात जिड़े से यहाँ करा दे थे आज असफलता दी जिड़ा सीढ़ी है से कुथी ना कुथी अहाँ जो हमेशा आगे बढ़ने वास्ते जिड़े से प्रेरणा दिंदी है क्योंकि अहाँ असफल होंदे न ताई अहाँ अपनी जिंदगी च अगे बढ़ते न कई बार तो हाँ दिखते होने न कि यहाँ कोई भी काम करा देन तो हाँ इस कम में जो नहीं करी पान देन या से काम वहाँ नहीं करी पान देन तो हाँ फिर ते कोशिश जड़े से ज़रूर करते न कि से काम जड़े से होइया कने हाँ भी इस कम में च सफल होन सफलता हाँ जो ताई मिलती है जल वहाँ इस कम में जो अच्छे तरीके ने करते न कने सफलता पाने वास्ते हर कोई मेहनत करा था मेहनत करना भी ज़रूरी है कोई भी यहाँ काम करते न चाहे यहाँ खाना ही बना देन तो तिस वास्ते भी मेहनत लगती है हाँ पढ़ाई करा देन बच्चे पढ़ाई करा देन तो तिस वास्ते भी से मेहनत ज़रूर लगा देन अगर पूरी लगन कने मेहनत ने से पढ़ाई करा देन तो ज़रूर तिना जो तिस पढ़ाई च या तिस मेहनत दा जिड़ा फल है से ज़रूर मिलता है पर निर्भर यहाँ पर करते है कि यहाँ किस तरीके ने मेहनत जिड़े से करते न तशो तो इसी कने यहाँ फ्री ते कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ाना है कने तो हाँ जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलना है क्योंकि गलबात करने गीत संगीत तुहां तक पहुंचाना भी जरूरी है कने तुहां सारे भी इंतज़ार जड़े से करते रहते हैं कि तुहानी जड़ा फरमाइश है न से कल दियाँ तुहां तक पहुंचान तो ज़रूर अगली फरमाइश तुहां तक पहुँचान दे न कने सुन दे न ईसा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुहां सारे भी ऐसा प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा कने ने सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: कानून दशमलव तो मेगाहर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं तो हाँ सारे ही सुनिया ए गीत ए फरमाइश फिर ते हाँ वापिस अपनी जेड़ा गल बात है तिह पर आई हो न कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़े होने न कने अगर नहीं जुड़े हो न तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़िया समय दी ओर अगर अहाँ अपनी नज़र दौड़ाते न तो समय भी अपनी रफ्तार लेकर जरूर चल आए 2:31 कार्यक्रम चोइया न कने जरूर तो हाँ सारे जो पता है कि ये सफ़र तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक कने आज अहाँ जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दे न से करा दे न असफलता दी जेड़ा सीढ़ी है सही अहाँ जो कुथी ना कुथी सफलता दी ओर लेकर जाती है क्योंकि अजकने दौर की अहाँ गल करिए या युवा पीढ़ी की गल करना या बच्चों की गल करना तो से कुथी ना कुथी अगर एक बारी असफल हो जाते न तो से अपना जेड़ा हौसला है से कुथी ना कुथी छड़ी देन या दोबारा जेड़ा है से मेहनत नहीं कर देन या गलत कदम कुथी ना कुथी जेड़ा है से उठाई लैन देन क्योंकि अगर अहाँ मेहनत कर देन ताई अहाँ आगे बढ़ देन कने मेहनत ने हर काम अहाँ हासिल करी पान देन क्योंकि एक किसान जेड़ा है से खेती बाड़ी करता है किसान जेड़ा से अपनी खेती बाड़ी करी करी जेड़ा भी जैसे इस टाइम की अहाँ गल करिए जरूर है मेहनत करता है फिर से जिन्ना ऊर लगाई करी तिना मेहनत की फिर जेड़ा एक साल का जेड़ा पूरा राशन है से पाई लैन देन पर मेहनत जेड़ा है से कितने दिन की लगती या हफ्ता है या 2 हफ्ते अहाँ जो मेहनत करना पौंदी उन तो वैसे भी हर काम आसान हुई है पहले उनका था कि सारे काम अहाँ जो जड़े से हाथ नहीं करना पौंदे थे उन तो हाथ की जगह मशीन जड़ा न से आई न पहले उनका था कि अहाँ सारे काम जड़े से हाथ ने करते थे कने उन जिन्ना ही ऊर लगाई था तिन्ना ही अहाँ दवाइया का जड़ा छिड़काव है से जल्दी जल्दी करी दे दे कि अहाँ जो काय तालने की जड़े से जरूरत ना पवे तो दिखा काम तो हर जगह पर आसान हैं जरूर ये उपर गलबात अहाँ की चली हुए कने अहाँ के जेड़ा श्रोता न सभी अहाँ कने जुड़ा देन कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर कने जुड़ी सकते कने अहाँ कने गलबात जेड़ा इसे जरूर करी सकते तो श्रोताओं जुड़ने वास्ते जेड़ा अहाँ का नंबर है से तुह तक पहुँचाई देन नंबर है 7018117091 तो इस नंबर पर तो हाँ कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा इंतज़ार की जेड़ा घड़ी है से तुहां वास्ते बिल्कुल ख़त्म है अगले जेड़ा श्रोता न से अहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं न कर दिन तिना कन्ने गल बात हेलो
1: नमस्कार महाराज जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: जी महाराज जी ठीक ठाक जी तो आप सुनाओ
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी
1: अच्छा जी
0: जी तो हाँ कुछ ते बोला दे कने तो हम दा ना क्या है जी
1: मैं जी डाड ते बोला दा कने मेरा नाम हरदेव है जी
0: जी डाड ते बोला दे हरदेव जी
1: जी
0: जी तो हरदेव जी आज कना जेड़ा दिन है से तो हम दा किस प्रकार चल लिया
1: मेरा हर रोज दिन के ऐसा बिल्कुल अच्छा ही चलता जी
0: हर दिन जेड़े से अच्छे ही जानता अच्छे ही जाने चाहिए ना जी
1: जी
0: ता हरदेव जी आज यहाँ जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा देन से तो हाँ जरूर सुनी ली होनी है
1: जी महाराज
0: जी तो हाँ क्या अपने विचार जेड़ा न रखना चाहेंगे
1: विचारे रखना चाहते महाराज जेरी सफलता है
0: जी
1: इंसान जो जरूर करना चाहिए
0: जी
1: एक सफलता ऐसी होंगी कि तेरी नकल भी करना चाहिए
0: जी जी
1: क्योंकि एक मेरा दोस्त था है स्कूल जाता था
0: जी
1: कने राती पढ़दा दिन भी पढ़दा राती ज्यादा पढ़दा है
0: जी जी
1: फिर क्या करना तिन्नी के तिन्या हक लाने ने चोटी रखी है तिन्नी
0: जी जी
1: तिन्नी चोटी रखी है तो राती तिन्नी पढ़ना बहना तो रस्सी कन्ने है बरले कन्ने रस्सी बननी लैनी के चोटी बननी लैनी
0: जी
1: करता था निंदर लगनी थी सिद्धू रोनी का चोटी खड़ी होनी तो तीन खड़ी पढ़ना भाई जाना
0: जी
1: जनाब तो तीन पढ़ पढ़ सा खरा आदमी बनी गिर के क्या एसडीओ लगी है जी है तीन सफर तक बनाई नी
0: जी
1: बनाई जी।
0: जी।
1: जनाब एक्सलेटर आई गया तो जेडे ग्रां के बंदे है तेना विशा हिसाब करना लाए तो कोई मास्टर बने कोई मस्तानिया बनिया कोई खरे खरे उदय पर गया है मतलब इसी वास्ते के सफर तक बड़ी जरूरी है
0: जी कने अहां असफल होंदे ना ताई तहां आगे बढ़ते ना जी
1: जी महाराज
0: क्योंकि पेरेंट्स भी अपने बच्चे जो कुथी ना कुथी अगर बच्चा गलत काम करा दे या कोई भी गलत काम कर दे तो पेरेंट्स भी उस जो टोक दे ना जी
1: जी जी
0: जी क्योंकि कोई भी काम जिड़ा से हर कोई सही काम नहीं करी पांदा ना जी हर
1: नहीं करी पांदा जी
0: अपना अपना हुनर होंदा ना जी
1: हां जी हां जी
0: क्योंकि अगर मिंजो अगर पेंटिंग करना पसंद है या मेरी जिड़ा पेंटिंग है से अच्छी है या सिलाई करना अच्छी है तो हर किसी का अपना अपना हुनर है ना जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी पर निर्भर यहाँ पर करते है कि यहाँ किस प्रकार मेहनत करते हैं ना जी
1: मेहनत करना जरूरी है जनाब
0: जी जी जी तो हरदीप जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: जनाब गीत समझ लिया चाहे भजन समझ लिया चाहे शब्द समझ लिया मेला दो दिन का राम नाम गुण गा
0: जी मेला दो दिन का
1: हाँ जी राम नाम गुण गा
0: जी जरूर ये गीत तो हाँ तक पहुंचा दें जी
1: ठीक है महाराज जी
0: तो हाँ भी चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी
1: धन्यवाद महाराज
0: जी ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो जरूर इस कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ा देना कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक पहुँचा देना क्योंकि गलबात थोड़ी देर ज़्यादा हो जाती है तो अहां दे जेड़ा श्रोता न से जरूर इंतजार कर देना कालू दिया गीत संगीत या फरमाइश यहाँ तीन तक पहुँचा देना तो ज़रूर ये फरमाइश तुह तक पहुँचा देना तो हाँ सारे ही इंजॉय करा।

0: कानू दशमलव तो ओमेगा हर्ट्स पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश ये भजन अहाँ पहुँचाया हरदेव जी तक कहने से रहने वाले ने डांटते तो हाँ सारे भी ये भजन जरूर इंजॉय किया होने कने जरूर ध्यान ने सुनिया होने सुनना तो बनता है ना क्योंकि कोई भी काम करते ना हाँ अगर पूरी लगन मेहनत नहीं करते ना तो जरूर अहाँ इस कमे च सफल होते ना कने अगले जेड़ा श्रोता ना सभी अहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: हाँ जी
0: ठीक ठाक है ना
1: जी।
0: जी
1: वाह
0: तो हाँ कुछ ते बोला दे कने तो हाँ दा ना के है
1: जी। हाँ तपो बने थे जी।
0: जी तपो बनते बोला दे।
1: हाँ जी सेतुराम
0: जी जी क्या काम कार तो हाँ लगाया क्या करा दे।
1: काम कार था अभी कल दो त्रा बकरियां रखनी हो तेना चारा दे
0: जी
1: बने थे
0: जी जी
1: बने थे थोड़ा प्रोग्राम सुना दे।
0: जी अच्छा बने च जेड़ा प्रोग्राम है से सुना दे
1: हाँ जी
0: जी कदिया लगा था तो हम जो ये प्रोग्राम
1: प्रोग्राम तो बढ़िया जी थोड़े सारे प्रोग्राम बढ़िया है
0: जी
1: पांच चार पांच साल हो गए सुनते हैं।
0: जी सारे प्रोग्राम बढ़िया न
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी ता आज जेड़ा गल बात करा दे न सभी तो हाँ सुनी कि नहीं सुनी।
1: नहीं मैं तो उन्हें तो लगभग 10 ही मिनट हो गया ना।
0: जी अच्छा ली 10 ही मिनट हो गया रेडियो सेट ऑन कितने की
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: फोने
1: जी
0: च सुना दे
1: हाँ जी
0: फोने च।
1: फोन
0: जी जी चलो अच्छी गल है जी थोड़ा दे अपना काम भी हो जाता कन्ने रेडियो ने
1: जी
0: वैसे भी मन लगे रहता ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी
1: मनोरंजन सारा होता जानकारी
0: जी
1: सारी मिलती
0: जी जी
1: प्रो।
0: जी तो आज यहाँ जेड़ा गल बात करा देना से करा देना असफलता दी जेड़ा सीढ़ी है सही यहाँ जो सफलता दी और जेड़ा से लेके जाती है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी तो तुम्हें क्या लगता तू हाँ अपने जीवन च किस प्रकार संघर्ष किया किस प्रकार तो हाँ जो भी असफल होए फिर ही तो हाँ सफलता दी और चले।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तो हाँ किस प्रकार अपने जीवन च मेहनत की किस प्रकार स्ट्रगल जड़े से किता तो हाँ अपनी जिंदगी च।
1: जिंदगी सफल
0: जी
1: सफलता तो मिल सकती है मेहनत करता बंदा का।
0: जी तो हाँ भी इस गल ते सहमत हैं कि मेहनत करना जरूरी है ना जी
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: मतलब मेहनत
1: जेड़ा
0: भी।
1: बंदा
0: जी
1: हाँ जी
0: जी
1: मेहनत कर गए ताई फल मिल सकता है।
0: जी जी जी मेहनत दा फल मीठा होंदा ना जी। जी जी ता अहाँ कोई भी काम करते ना तो हर काम च
1: हाँ जी
0: मेहनत ही लगती है ना जी।
1: आज कुछ कटिए
0: जी हेलो
1: हाँ जरा गहरी जगह चाहना थोड़े।
0: जी जी
1: हाँ जी
0: जी उन ठीक पहुंचा दी आवाज़ तो वहाँ
1: हाँ
0: तक।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी तो मैं ये बोला दी कि कोई भी काम कर दे ना तो हर काम में च मेहनत ही लगती है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी बिना मेहनत
0: जी
1: का कोई नहीं चीज मिल सकती।
0: जी कोई भी चीज़ नहीं मिली
1: हाँ जी
0: सकती।
1: हाँ जी
0: जी तो आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
1: गाना सुनाई दिया भजन सुनाई दिया खरिया
0: जी
1: कमाले बंदिया खोटियां खानिया बंदिया दो रोटियां।
0: जी इस भजन दी बड़ी फरमाइश होंदी है इस भजन दा मतलब क्या है जी।
1: इसका मतलब पढ़ने जिन जिन्हें भी कलाकार है गया ना गाना है
0: जी
1: ये पूरा जीवन का निचोड़ कटी थे इससे। हाँ
0: जी थोड़ा दिया तो हाँ भी दसी दिया क्या निचोड़ इस गाने च है
1: जी हाँ जी
0: क्या जेड़ा गाने च निचोड़ ऐसे जरूर थोड़ा दिया दसी दिया बाकी श्रोता
1: इससे
0: तक।
1: ही है ना है कि
0: जी
1: दिखा ना जेड़ा खरा काम कर गए इसका
0: जी
1: फल अच्छा ही है
0: जी जी जी
1: ना। बंदा कुछ भी करगा मेहनत करा
0: जी
1: दिन रात करा अपन खानी संजय दो ही रोटियां ना।
0: जी चाहे से अमीर है चाहे से गरीब है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी जरूर ये भजन तुह तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ
0: ਜੀ।
1: ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੰਨੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ
1: ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ
0: ਜੀ ਜੀ ਸੱਚਨ
1: ਹੋਰਾਂ ਦਾ
0: ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਤਾ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ
0: जी। चलो अच्छी गल है जी। नहीं सारे प्रोग्राम जेड़ा न तो सुनदे तिदी वास्ते तो हुंदा तहे दिल ते धन्यवाद है जी।
1: ठीक है जी, ठीक है जी
0: जी। तो शो तो तुह सारे जो ही अगली फरमाइश दी ओर लेकर चल दे न सुनदे नि सा प्यारी दी फरमाइश जो प्यारे दे भजने जो।

0: तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं तुहां सारें ही सुनिया ये प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश। इसी भजन कन्या हाँ फिरी ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है, पर अगले जेड़ा श्रोता न से अहां कन्ने जुड़ चुके न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: बढ़िया जी, बढ़िया
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे, कने तुहां दा नां की है जी?
1: चातड़ुए ते बोला दे। हां जी
0: जी, चातड़ुए ते बोला दे ना जी।
1: हां जी
0: जी, क्या काम कार तुहां लगे आ, क्या करा दे?
1: बस उठे हां, हुण रही जगह ना मैं रेडियो करता हूं ना।
0: जी जी,
1: जगराते के दिन ज्यादा उठा हां रही है।
0: जी जी, तो कार्यक्रम च समय बड़ा थोड़ा दिया है, तो जरूर अपनी जेड़ा फरमाइश है से तुहां दसी दिया जी।
1: हां जी
0: जी, कुंडिया गीत सुनने जी तुहां।
1: सच्चे जी गाना नवा निकलिया सुनाएंगे संत बात बाजे वाजे च।
0: जी जी जरूर जी, कुंडिया गीत है
1: गाना वे मेरे के लंगा डेरा कुबती तलाया।
0: जी जरूर, एक ही ते फरमाइश तो हाँ तक पहुंचा दें जी।
1: शांत बात बाजे गाने च वाजे चाहे
0: जी, शांत
1: मेरे के लंगा। हाँ जी जी
0: जी जी जरूर, हाँ अपनी तरफ ते कोशिश कर देने कि ये गीत तो हाँ तक पहुंचा देना ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी, और ठीक ठाक है ना?
0: हाँ जी ठीक ठाक है जी,
1: वही यहाँ भी गाते के रात के
0: जी। जी जरूर है गीत तो हाँ तक पहुंचा दें जी।
1: ठीक है, बड़ा बड़ा धन्यवाद वाला
0: जी, तो हाँ दा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਨੇ, ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਹਾਂ ਕਨੇ ਜੁੜੀ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਸੇ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਹੈ, ਕਨੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਨੇ इंतजार की जड़ा घड़ी है से तुहां वास्ते जरूर हाँ खत्म करनी है, कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचानी है, तो जरूर अगली फरमाइश जड़े से तुहां तक कहाँ पहुंचा देना, कने तुहां सारे भी जड़ा इंतजार है से जरूर करा देना, कने आज हाँ जड़ा गलबात करा दे थे से करा दे थे कि असफलता की जड़ा सीढ़ी है सही यहाँ जो सफलता की ओर लेकर जानती है, तो जरूर मेहनत करा, मेहनत करी करी हर काम जड़ा हाथ जानती है, तो जरूर मेहनत करा, मेहनत करी करी हर काम जड़ा हासिल है से जरूर करा। इसी करने आहां तुहां जो ले चल देना अगली फरमाइश दी ओर, सुन देने दो बोल क्योंकि समय जड़ा है सियाहल पड़ा थोड़ा दिया है।

मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शकों तो सारी अपनी रेडियो तो शशि जुदिया अनुमति कने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपनी पंती।

0: कहाँ जा रहे हो? Let's go.
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर हो गई. मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए. थैंक यू.
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ. अभी से नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं.
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है. टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता. इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है. पानी बचाने के कई उपाय हैं. जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसकी सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: चलन कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर हो गई।
3: मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए।
2: थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
3: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
4: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
5: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सबका कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, अब खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना, मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई। वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती थी, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। हैं, वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

नमस्कार श्रोतों, स्वागत है तुंदा सबीरा। नमस्ते नमस्कार तुसु सभी जो मेरा प्यार भरा नमस्ते, हाथ जोड़ करे, दोनों हाथ जोड़ करे आऊँ, प्यार भरे नमस्ते किया सो तुसु सभी जो कर दहा। श्रोतों के हाल चाल ठीक ढूँढे, उम्मीद भी हा और ये हौसला भी हा कि सब ठीक ढूँढे और हौसला उपजाएगी ऐसा ज़रूर ढूँढा चाहिए श्रोतों। और सचिन कपूर रहा और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ, बहुत सारी जानकारी तू हो गया सो शेयर करनी साझा करनी, सोके सोके इन दे श्रोता जो अस हो गए लगातार जुड़ते हैं, त्यारी जो भी गलबात बंदे सो लाइव रे माध्यम तो है तुंदे घर घर तक के सो पहुँचन दे इन श्रोतों और फेसबुक रे माध्यम तो किया सो तो है हेरी भी सकते है ना। गुड खरा रहना बहुत ज़रूरी है, यानी कि है ना गुड रहना बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। अगर तो है गुड हिन छो तो सब चीज़ें क्या ना सो बेहतरीन तरीके होगी चली पी ना, और अगर तो है गुड नीन तो चीज़ें बेहतरीन तरीके होगी ना भी चलती हैं। बहरहाल बंदे की कभी भी इन दिक्कत का भी गलती भवाना छोता हूँ, जो हल्के न तीनों हमेशा अपनी गलती की सो स्वीकार कर लेना चाहते हैं, और जो मोटे बंदे ना जो बड़े बंदे बुजुर्ग बंदे है तीनों समझी करी माफ़ करी देना चाहता कि इन दे बच्चे तहिन है ना और इन दे अपने तहिन है ना, और बडेरा भी फर्ज बने गंदा है कि बच्चे समझे करी तीनों माफ़ करी करी चीज़ा जो किया सो खरा बनाई दिन बेहतरीन किया सो बनाई दिन। बहरहाल कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी जो असु तुसो की शेयर करनी साझा करनी है, और हमेशा है रिश्ते पर गल करते हैं श्रोताओं की, रिश्ते बचाने के अंश बहुत महत्वपूर्ण बंदा है, और जहने भी रिश्ते खराब होते हैं तो रिश्ता कोई अकतरफों खराब ना बंदा श्रोताओं, यानी कि ताली की सो दो हद तक बच दे श्रोतों है ना। अन्य जानकारी हिन सो भी तुसो गया सो जरूर शेयर करनी साझा करनी हिन। बहरहाल हूँ सचिन कपूर और इन दे श्रोता असुगे जुड़ी सकते हैं, तो जुड़ने वास्ते तुसु श्रोता 7018817091 पर कॉल करने हाँ, इन दा लाइव रा नंबर है, नंबर अक मौके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ, 7018817091 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो होने सकते हैं, अपने क्षेत्र की जानकारी अब वो की साझा कर सकते हैं, इन श्रोताओं जानकारी साझा करने लाइक किया सो जरूर बुआ, और रेडियो मंच दसने लाइक किया सो जरूर बुआ। बहरहाल धर्मशाला रा मौसम सभी पहले जानी लेते हैं श्रोतों की क्या बनते इस समय धर्मशाला रा मौसम क्या तापमान है श्रोतों, तो अगर है गल करिए श्रोतों तो इस समय 22 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो तापमान, और नमी री गल करिए हवा में नमी तो सो 73% क्या सो हवा में नमी इस समय श्रोतों। अने बहुत सी जानकारी है जो तुस हो गया सो शेयर करनी है साझा करनी है, लेकिन आइया बहरहाल सुरेख अजीरी फरमाइश माँ असु प्यारे दया गीत के असु ज़रूर हुनना हा। सुरेखा जी जो कि योल नोडरानी मंदिर रे निवासी हैं और त्यारी फरमाइश आई है, तिया अपनी फरमाइश माँ क्या ये गीत के असु ज़रूर हुनना हा, और इन्हें बहुत सारे श्रोता सूगी कनेक्ट भी भूना लगे जरूर कर ले, लेकिन आइया चल दिन और सुरेखा जी री फरमाइश में हुन दिन एक गीत

0: रविवार दसू कर दे थी फिलहाल था
1: हाँ जी।
0: जी। ता कितने भाईचारा बेखुरन, कौन कौन बेखुरन जी? अच्छा
1: भाई त्राई भाऊ ने अपने लगरे आज ऐसा लुक दो भाई है बोला
0: जी।
1: करा फोन मिल रहा मेरे बिठार तू है जाने के पहचान दे घूमे भाई ये तीव जान देना है।
0: अच्छा
1: उड़ रही हूँ वैसे ये अच्छा था बल ये करना और रिफरेंस देना बोला।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी। कुंडन
1: हाँ जी
0: की थोड़ा तुसु
1: हमारे लिए भाई जो तुमने पसंद हो फोन लेना कोई भी
0: हिंदी हिंदी पसंद जनाब, हिंदी पसंद अवे नहीं, हिंदी पसंद नहीं।
1: हाँ जी हाँ
0: जो तुसु जो तो है बल है सो हुनाई ना जी असु।
1: केल गारा कोई भी थी केल मराली कोई भी हेल गाई दिया भजन गाना जो भी है। जी
0: चलिए भगवान रा आशीर्वाद किए सो बिल्कुल बुना चिंदा है ना जी।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जनाब क्या काम कर देन तो है?
1: कुछ ना भाई रे क्या करने रखा दिया है जेसीबी चलंदा अपने यहाँ उसमें माड़ा मोटा कारोबार। हाँ
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी
1: जी
0: गल है जी। अपने काम में
1: जी
0: बहुत मुनाफा बुंदा जनाब
1: चलो भाई को यही रखा दू है भगवान मारा आशीर्वाद है।
0: जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है जनाब, जरूर होना लेते सो ना जी
1: ओके सर ओके जी ओके
0: जी
1: भाई थैंक यू।
0: जी श्रोतों कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा के नए सो चल रही हैं, और कार्यक्रम जो होगा बढ़ते रहें अगले श्रोता होगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते। हाँ
2: जी,
0: जी आवाज़ कटी होंगी जनाब।
2: ओ ठीक ठाक ने सर जी?
0: हाँ जी बढ़िया, तुम्हारा आशीर्वाद है जी। तो है दसा तो ठीक ठाक ना?
2: हाँ जी सर जी, ठीक ठाक ने, जो जिंदगी चली है सही चली है सर जी।
0: अच्छा चलिए
2: हाँ जी
0: ताजी, एक सवाल पूछना पूछना तुमो कि इतना कितने परसेंट चांस ने की तो है, मतलब फिर भी पहले ही है बोल सकते
2: सर, थोड़ा बहुत कहीं होती लंदा, पर
0: आवाज
2: डॉक्टर बोले,
0: आवाज जनाब दूर चलेगी थोड़ी करी।
2: मैं बोले सर जी थोड़ा बहुत है, डॉक्टर बोले चलो ठीक हो गया, कोशिश कर गई था कि नहीं। हाँ
0: अच्छा
2: जी सर जी,
0: कुछ
2: बाकी अंदर बाहर ही सर जी, बात करी ना चल नहीं सकता मैं कहना, और नहीं सर जी।
0: अच्छा तब
2: हाँ जी
0: कुछ
2: सर जी,
0: कुछ तुस वो अपने आप में बदलाव लगो जी, थोड़ा बहुत चेंजेस लगें।
2: बदलाव तो क्या ही है सर जी, चलने दिक्कत है मुझे हल्दी का,
0: लेकिन फिर
2: ज़्यादा देर ही बैठ ही नहीं सकता सर जी, मैं
0: अच्छा
2: सो ही होता सर जी, क्या करना होगा।
0: अच्छा
2: हाँ जी सर जी
0: ना तू वो लगूंदा
2: सर,
0: कि कखा 1-2% भी फर्क प्यूरा पहले तो।
2: थोड़ा दिया माड़ा दिया सर जी,
0: चलिए ठीक है जी।
2: माड़ा दिया सर जी, बाकी तो सर भोलेनाथ के ऊपर छड़ दिया। हाँ जी सर जी,
0: चलिए ठीक है जी, अगर 1% भी 2% भी फर्क आता फिर ही उम्मीद इंदे बिल्कुल
2: हाँ जी सर
0: कायम
2: जी,
0: रहने,
2: हाँ
0: और
2: जी
0: है ना उम्मीद अगर कायम है तो सब कुछ कायम है फिर, है ना जी।
2: हाँ जी
0: उम्मीद
2: सर
0: पर
2: जी,
0: था जनाब दुनिया टिको रही है केवल दिन, है
2: हाँ जी हाँ जी सर जी,
0: ना। चलिए हौसला मत हारा और सच्चाई रे हमेशा जीत बंदे, बेशक सच्चाई की ऐसो कितने भी टाइम ले लिया है ना, लेकिन
2: ये तो
0: सच्चाई
2: गलत
0: रे
2: है
0: जीत
2: सर
0: बंदे, और
2: जी,
0: तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, और
2: जी सर
0: जस सिचुएशन था तो है गुजरू कर दे हैं।
2: जी,
0: वाकई में बहुत कुछ सिखंदी जीवन में, और मुझे लगता तो है बहुत कुछ अनुभव कर ली लू बुना या छोटी दी उम्री माना जी।
2: हाँ जी हाँ जी सर जी, क्या बोल
0: जनाब तुमने आवाज़ नहीं छू कर दिया।
2: हाँ जी सर जी,
0: ठीक है जी, कुंडली गीत होना पसंद कर ले तो है।
2: मुझे सुनाई नहीं सर जी, प्रवीण ठाकुर दी आवाज़ जिस गाना, दही बाली मटकी टूटी गई। हाँ
0: अच्छा
2: जी सर जी,
0: चलिए ठीक है जी, ज़रूर तुसु एक गीत होने ले है
2: ठीक है सर जी, धन्यवाद सर जी, तो सादा
0: जी। जनाब धन्यवाद धन्यवाद।
2: जी, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी। तशोतों इंदे श्रोतागण थी है, और बाकी मैंने कि लाइफ रो कोई पता नहीं श्रोतों है आए हमेशा छोट छोटी गल्ला पीछू की सो लड़दे झगड़ दे विन देन छोट छोटी गल्ला पीछू की सो चीज़ा जो बड़ा करी दिंदे न, छोटी करी गल बहुत हसी भी है, बड़ा करी दिंदे हैं लेकिन लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कि कहने कसी होगी कि ऐसा क्या बचेगा। अच्छा और ये शख्स जहने भी मुझे कॉल करते तो मुझे हमेशा ये गल रही रहता कि मतलब लाइफ का भरोसा नहीं है, कहने लाइफ कसी होगी कि ऐसा क्या करी दिया। चलिए सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अक्सर बोलना हो कि खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, क्या लेकर गाने जिंदगी मंचना, खुश रह ले, लिहाजे होगी गाल कर ले, तहजीब होगी गाल कर ले, तब बोलना यार फलाना खरा थो, फलाने रा पुत्र गया उसको खरा हो या फलाने रे दे गए थे सब खरे थे। और अगर तू है लिहाजे होगी गाल ना कर लेता तो फिर तू वो पता कि दुनिया अंदर सिर्फ छोटी करी गल की सो बुना चाहते, फिर दुनिया तह गला जो की करी बड़ी करी देंगे की करी सो गल मोटी करते सो तुसु बिना पता लगता कि क्या क्या पूछगो। सो कोशिश करा अपने हमेशा बोलूँ अपने रिश्ते जो बचाने की कोशिश की सो जरूर करा। असू वो इंदी इंदे घर आले की इंदी मम्मी है की असू इस पूरा कि रिश्ते के सो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और जितने रिश्ते तो है निभाई सकते हैं और जितने रिश्ते तो है कि ना सो जुटाई सकते हैं सो बहुत जरूरी है निभाना भी और जुटाना भी। तो बल्दे ने रिश्ता बनाना तो आसान बनता, बनाई तो मतलब दोस्त मिनटा बनी जाते, रिश्तेदार मिनटा बनी जाते, सब कुछ मतलब रिश्तेदार या वट एवर जो भी है मतलब रिश्ता बनाना आसान बनते लेकिन निभाना के ना सो मुश्किल बनते ना। और जो रिश्ता निभाएगो सो इस दुनिया में क्या सो बेहतरीन अपना ना कराएगो। चलिए था हम सचिन कपूर और इंदी अपनी गप्पा चल रही, बहुत सारी जानकारी तुझे होगी सो शेयर करनी साझा करनी ना। फिलहाल हूँ दिन टंग थो टिकरी थो और टिकरी मंच उडरी ग्रां भी पेंदा गरखा तड़ी थो फरमाइश आ तो तैयारी फरमाइश मगे सो केलंग महाराज जी का गीत किया सो हूँ दिन है सब बने दे तो है आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

சோதோய் வெடிகுஞ்சன் தரம்சாலாவரம் சச்சின் கபூரா காரிக்கிரம் இந்தி அப்படி அப்பா கேன் சோ சொல்றேன் தான் சலிய காரிக்கிரம் ஜாகோ பிடந்தன் ஒரு ஜானக்காரியா ஹை நடி ஜீல் தோ விலேட்ரி தி சுகர் தி தி தா மோட்டே தோர் பர் சோதோ அகர் அவும் பல்லு தா ஃபிலஹால் தா தூ பதா கே பர்யட்டன் நகரி தரம்சாலா மெக்லோட்கஞ்ச சமீப் ஹஸ்தே தே ஐதிஹாசிக் எவம் தார்மிக மகத்துவ நடி டல் ஜீல் ரா ஆகிர கை வர்ஷத்தோ பாத் கே சோ சோந்தேரே கரண் ஒரு புன் ஜீவன் ரா காரிய கே இன் தினம் ஜோரோ ஷோரோ சோ கே தோ ஜீல் री वर्षतों के सो शतों तड़ी मिट्टी भी हो गंद भी किया सो फिरी आक मौके फिरी दसना चाहता कि फिरी तड़ी किया सो कट्ठा लगी प्यूरा हा भूना दोबारा थों किया सो बहक दोबारा थों किया सो वापस चलिया और झील अंदर किया सो पूजी को शोतो है ना और अब किया सो इस यहाँ रे कार्य पर किया सो कार्य री गुणवत्ता पर किया सो सवाल उठ कर दें श्रोतों के अगम के फिर मनु रे धार्मिक आस्था पर्यटन कारोबार सहित स्थानीय मनु जो परेशानी झेलना किया सो पे कर दे स्थानीय मनु रहे बलना हा कि निर्माण कंपनी और ठेकेदार री औरतों निकाली गए गंद और सुरक्षित निस्तरण री उचित व्यवस्था ना भोया बरखा भी चल दे मिट्टी वापस झील में के सुसमाई गया जत्थों पूरे अभियान रा उद्देश्य प्रभावित किया शुभ चिगो हर्षतों स्थानीय समाज सेवी और धार्मिक आस्था रखने वाले मनुथों भतल्ला पंचायत रे उप प्रधान करनैल सिंह समाज सेवी एवं कारोबारी नड्डी तोता रानी बरनेट निवासी बिट्टू पठानिया बरनेट निवासी बिट्टा पठानिया कारोबारी एवं प्रसिद्ध लोक गायक कमल नैरिया संजीव सिंह राणा दिनेश कपूर विपिन नैरिया प्रेम सागर नरेश शर्मा हिमालयन गद्दी यूनियन रे बिल्कुल समाज सेवी महेंद्र सिंह डॉक्टर विशाल नैरिया व अन्य मनु हैं इस पर के सो कड़ी आपत्ति जताई है और संबंधित विभाग तो मामले व संज्ञान लेने रिकिया सो मांग भी करे है त्यारे बलना या रसबी रहे बलना कि यदि समय व्यंत उचित प्रबंधन न हुआ तो झील रहे संरक्षण और सौंदर्यकरण पर खर्चा जो खर्च कर रही जो राशि अपेक्षित लाभ थे रना हुआ है और मनु थो प्रशासन थो मनु अकेसो प्रशासन तो मांग करे कि ये जो गंद फिरी चलिया इसी फिर एक मौके के सो निकाली गया अच्छा हाँ वैसे काफ़ी लंबे समय थो कि सो एरा की डल झीले वाकई में काफ़ी लंबा समय बची को बता है ना करोड़ों रकम है पर अब करोड़ों रकम पर भी किया सो सवाल उठो कर दे इन शो तो बहरहाल जानकारी रहा बिटा रहे हैं चलते रहे ना तो सब बन रहे हैं सचिन कपूर सो की कॉल जरूर कर सकते हैं 708-8-709 पर नंबर आक मौके फिर हूँ शेयर करना साझा करना 708-8-709 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं इन शोतों दही वाली मटकी गीतारी फरमाइश है जो कि प्रवीण ठाकुरी आवाज़ में गीत था आइए जी इस गीता जो है सब भी किया सो जरूर होने लेन देन बनी रही है तो सब आज सचिन कपूर सो की ऊंच अपने बन रही

शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम इंदी अपनी गला गैन सोलो ग्रीन अपनी गप्पा गैन सोलो ग्रीन बड़ा बड़ा स्वागत है मौके फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा ता कॉल जरूर कर सकते हैं श्रोताओं 708-8-8-709 पर अपना पसंदीदा गीत थोड़ी सकते हैं। बहरहाल कार्यक्रम जो होगा बनंदन और अगले अगली जानकारी होगी तुसु रूबरू करवंदन प्रदेश प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला रे मुख्य द्वार थों लेकर शिक्षा बोर्ड बस स्टॉप और वन वाटिका तक सीवरेज व्यवस्था जो दुरुस्त करने वास्ते किया सो जल शक्ति विभाग और नगर निगम धर्मशाला द्वारा संयुक्त रूप थों पुरानी पाइपलाइन बदलने रा कार्य किया सो चल रहा शोतों। इस कार्य रे उद्देश्य वर्षों पुरानी किया और लीकेज वाली सीवरेज लाइन जो किया सो बड़ी क्षमता वाली नई पाइपलाइन थों नई पाइपलाइन ना थों कि ऐसो बदल कर सीवरेज ओवरफ्लो भी समस्या स्थाई समाधान करना हाशो तो लगातार भचुकर दे बरखा और बरखा रे कारण निर्माण कार्य प्रभावित अब भचुकर दा हाशो तो खुदाई थों बाद सड़क पर मिट्टी वे बड़े बड़े ढेर और कीचड़ जमा बुझी गुछूरा हो जमा भूने थों शिक्षा बोर्ड बस स्टॉप रे आस पास हालत बेहद खराब किया सो बुझेगी हाशो तो धर्मशाला रा प्रमुख बस स्टॉप हाशो तो जड़ी रोजाना सैकड़ों विद्यार्थी कर्मचारी और आम नागरिक बस थों उतरते हैं और बस समझ चढ़ते हैं शो तो पर बस थों उतरते ही कि ऐसो मनु जो कीचड़ और फिसलन थों बुझ कर कि ऐसो गुजरना पे करता बाइक चालक पैदल यात्री और कॉलेज इने गाने वाले विद्यार्थी तो सब तो अधिक परेशानी किया सो झेलना पे कर दिया। कॉलेज में नया सत्र के सो शुरू भूने सो के शतों रोजाना बड़ी संख्या में के सो प्रथम वर्ष छात्र इसी मार्ग थो धर्मशाला कॉलेज पुजू कर दे ऐसे में बरखरे बिच सड़क पर फैली मिट्टी और अधूरा निर्माण कार्य विद्यार्थी भी चिंता बढ़ाई सकता है शो तो मनु रहे बलना है कि यदि जल्द सड़क जो समतल ना करो तो किसी भी समय दुर्घटना हो सकते और किसी भी समय किया सो बड़ा हादसा बुझ सकता है। अब एमसी धर्मशाला या आईबीएस डिपार्टमेंट कसकी बड़े हादसे रहा इंतजार करूँ करता है ये सो ही जान सकते हैं। फिलहाल तो है गुजारिश करते हैं कि जल्द तो जल्द किया सोए वाला रास्ता किया सो साफ हुआ ता कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा मंच तो ये सब बन रहे नार जैसे सचिन कपूर सो की जानकारी रहा पिटारा शो तो ये चलते रहना प्यारी रे स्टोरी रे अक सोचो कर दें तो है चाहत दे चलिए बल देना इच्छा किया सो ना मारना चाहते और इच्छा अपनी किया सो पूरा करना चाहते अगर तुम्हें इच्छा आता है जरूर पूरी कर दें।

FM ব্যান্ড 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा हूँ और सचिन कपूर। चलिए कार्यक्रम जो आगे बढ़न देन और प्यारी दे स्टोरी श्रोता हूँ लेकर तुमने सभी रे रेडियो सेट में हूँ हाजिर हुआ हा। श्रोतो कस के बड़ा खूब बोल रहा और बड़ा ज्ञान बोल रहा हा श्रोतो कि इंसान रे शायद जिंदगी की ऐसो कदी प्यास ना बुझ दे है ना। प्यास तो समझे के छगे प्यास मतलब कि तस्यू लगता कि ये भी मेरा बुआ ये भी मेरा बुआ ये घर भी मेरा बुआ ये भी हम कर लूँ ये घर भी मंजूर है बुआ है ना। तो शायद ते तिगर गया सो मरने तो बाद इंसान री जो हड्डी बंदी जो अस्थि बंदी तिंजा जो गंगा में गया सो बहन दहन क्योंकि जींद जी तो इंसान री प्यास बुझ देने। अक प्यारी दी स्टोरी है शो तो भाई अक गुरु जी बंदे थी है तिंजा ले दो शिष्य रगे है सो रेंदे थी है और अक दिन गुरु जी के बोलो अपने दोनों शिष्य जो कि वो पहाड़ पर चोटी पर किया सो मेरे मित्र दिन त्यारा हाल चाल किया सो पूछिया और सो कुछ चीज़ दिले कुछ भी दिले सो आपू सो के सो ले कर रही है तिन्या बोलो गुरु जी है गुरु जी बोलो गुरु जी तो है तो सो नमस्ते है तो है आज्ञा दया है चल पंदे। गुरु जी ये बोलो कि रुके गच्छा ये दो ही थैलो हिन इन्या भी लेकर गच्छा तथी में से अख थैलो के सो पूरा भर रो तो जती अनाज उनोज थो और आख क्या थो सो खा ले थो तिन्या धोनो मैं से किया सो आख थोड़ा करे चतुर चलाक थो सो फटाफट गो और खा ले आला तिन्या चुक के लो और दुआ पे भर रो तो चुकना ही पैना थो मन ना बंदा था मैं चुकना ही पैना थो और तिन्या बोलो ठीक है गुरु जी जो तुम दे आ गया आऊँ वे भर रो सामान किया ये ले चलता है चोटी पर बोले जड़ जड़ी मनु मिलता गले तो जो तड़ी तड़ी तो किया सो इस सामाना जो बनता गच्छे राशन जो किया सो बनता गच्छे राशन पानी जो है ना। बोलो ठीक है गुरु जी और तू ये बोलो कि खा लिया था तो जो जो जो चीज़ा मुल दी गली तीन तो भरता गच्छे जो जो आकर्षित चीज़ा तो जो हुजली तीन तो भरता गच्छे। बोलो ठीक है गुरु जी क्या हुआ कि ये भरदा गो इसी मूल दी की चीज़ क्या क्या मूल दी सो तू सो है दस ले लेकिन ये आड़ा कि खाली बड़ा भारी बैग तू से रहे और ये दिंदा गो सामान दिंदा गो जिन जिन चढ़ाई चढ़दा गो तीन तीन सामान किया सो दिंदा गो राशन पानी दिंदा गो और सेरा बैग हल्का हल्का बुंदा किया सो काफ़ी ज़्यादा हल्का किया सोतों सो बुझ गो और अभी अपना सामान के सो भरना लगो इसी सब में पहले तांबे रे सिक्के मुड़े इन्हें सो भरना शुरू करी थे तत्थों थोड़ी दूर गाने थों बाद चांदी रे सिक्के मुड़े इन्हें सो भरना शुरू करी थे फिर एट लास्ट इस तो इसी जो सोने रे सिक्के के इन सो मुड़े इसी ओर रेव न हुआ और इन्हें सो बिके सो भरना शुरू करी थे और इतने ज़्यादा भरे ले अब ये आला कि सो तो खाली करता चल रो तो सो तो ऊपर खींच करे मिलिया और जो पहला आला तो जो सोना चांदी भरो करता सिरे मन में किया सिरे जहन में किया सो तो सो पाप चलिया कि अब तुम अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी व्यतीत करनी है कुछ कि मुंजो ले सोना चांदी इतना भरी चलिया अब मुँह गुरु गुरु जी लेना गाना सीधा किया सो मुँह चले गाना सीधा अब अपने गाँव और ये पहला आला मिलकर चलिया तो इन

कि काफ़ी ज़्यादा सो सब कुछ बरेली रहा तो अपनी बोरी में और इतना ज़्यादा कि बेहोश बुचगो ए बिच पहाड़ी में कि सोलुड़ीगो और बेहोश बुचगो। एट लास्ट फिर सीओ सो वापस आओ इनिए कि सो चुक्की लो और इन्हें चुक्की करी बड़ी मुश्किलों की सो गुरु जी तक पहुँचाओ। और गुरु जी वो सारी स्टोरी दस कि भाई ये करीब हुआ गुरु जी है जो तुम्हें दोस्त थी है मित्र थी है तीन ये कुछ मैसेज किया सो दूसू भजन और दुवे भी होश चले आए तसी होश आए और तिनिए ये रुकिया हूँ तब सही ठिकाने में पूजी चूरा पर किया परेशान भू और पूछू नहीं है गुरु जी तो गुरु जी है अक स्टोरी अक एग्जाम्पल रहे तौर पर मैं सेट करी थी सो तो ये स्टोरी सो कि अहमणु भी किया सो जो भी हुसदा सो वह है अपनी बोरियाँ भरदा चलते हैं यानी कि जो भी हुसदा कि लालच है अपनी बोरियाँ भरद फिरद हैं अह अपनी बोरियाँ टेंशन के सो भरद फिरद हैं है ना अह अपनी बोरी अंदर के ना सो फिजूल रे गल्ला के सो भरद फिरद हैं अह अपनी बोरी अंदर के ना सो बे मतलब री गल्ला भरद फिरद हैं अह अपनी बोरी अंदर के सो फालतू री टेंशन भरद फिरद हैं कि फलाने होगी भी पुछ गए अच्छा फलाने ही करी करी हूँ तो मुझे ये करी करी हूँ ये फलाना ये करी कौन रे हूँ ये फलाने मतलब कसकी भी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना सो है अपनी बोरियाँ भरो करते हैं इस प्रकार री चीज़ है सो अपनी बोरी अंदर है सब भरो करते हैं और रख दिन इनकी हक री कहना सो बंद बुझ गाने इनकी हक ही हकू कि सो नहरा बुझ गाना और असू पता भी ना लगना यानी कि इनकी मृत्यु की सो बुझ गाने और असू पता भी ना लगना और जो दूजा शख्स थो जो दूजा सेशन थो ये सिखा सो कि जितना भी आ अपनी खुशी बनते चला तो है जो भी आ तो सुल अपनी खुशी की है सो बनते चला अपना हासा बनते चला है ना अपना खरा व्यवहार किया सो बनते चला गुड थिंकिंग बनते चला पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव थिंकिंग किया सो बनते चला तो इतों जिंदगी किया सो आसान भी लगते हो जिंदगी की है सोतों सो बेहतरीन भी लगते है जीने रहा मजा किया सो भी इंदा हा लेकिन अगर यह इन्या टेंशन अंदर रह लै कि यार फलाने भी जिंदगी क्या बुझू करता कि फलाना अपनी जिंदगी ये कौन करूँ करता या यह मंजोगी करो तो मुँह भी ऐसा होगी ये करना या इनिया ही करो तो मुँह भी करना मतलब इस प्रकार की अगर यह टेंशन रह लै तो अगले दिन बोझ के उसको इनकी झोली में भी भरे गाना और असु भी भारी लगना लगने सो बस यही बोलना चाहूँ सभी जो कि टेंशन मुक्त रहा है ना चिंता मत करा चलो कम कारा री चिंता तो बुंदे लेकिन बाकी गल्ला री चिंता मत करा और हंसने तो बड़ी एक्सरसाइज यह दुनिया मंज कोई भी नहीं है जी बिल्कुल जितना तो है खेली करी हंसी सकते जितना तो है जोर है हंसी सकते ने जितना तो है खुश रही सकते छोदों उतना जरूर रहा तुसु वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट आ असु वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट हा कजो कि तो है खुश रह लै तंदुरुस्त रह लै तो बहुत सारी बीमारी के सो तुंदे शरीर है थो नख दी हिन है ना बीमारी तुंदे शरीर में जकड़ी ना बहंदी तुसु ता हंस दे रहे करा और हूँ तो हमेशा बलो अशोतों कि हंस दे रहा मुस्कुरन दे रहा और रेडी गुंजन माँ तुंदे अपने नाचीज आर जे सचिन कपूर जो इं ही हुन दे रहा इं ही हुन दे रहा नमस्ते धर्मशाला।

0: चल कहाँ जा रहे हो? Let's go.
1: अब चले
2: थोड़ी देर हो।
3: मुझे गिफ्ट नहीं बैलून चाहिए।
2: थैंक यू।
0: क्या हुआ, ये सब क्या है?
3: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
4: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
5: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट,
0: टेस्ट।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सबका कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, हा? आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसकी सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और ठीक होंगे। श्रोतों, आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपका शरीर आपके साथ है और आपका शरीर आपके साथ यानी कि अच्छे तरीके से आपके साथ है, अच्छे वे में आपके साथ है, आपका शरीर काम कर रहा है, आपका शरीर जो है वो स्वस्थ है, हेल्दी है, तो फिर आप खुश होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी जो है वो पूंजी है कि आपका शरीर किस प्रकार का है। बहरहाल कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं और इस समय जो तापमान है धर्मशाला का श्रोतों वो 20 डिग्री सेल्सियस है। नमी की बात करें जिसको अंग्रेज़ी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है तो वो 72% है श्रोतों इस समय। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। देखिए आपकी जो पॉजिटिव माइंड है ना वही आपकी ताकत है, जो अच्छे विचार हैं वही आपकी ताकत है। फिलहाल कार्यक्रम में आगाज़ करेंगे हम इस प्यारे से गीत के साथ और फिर गीत के बाद श्रोताओं लेके चलेंगे आप सभी को अन्य जानकारियों की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।

तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर ये नहीं लिखा कि मरते दम तक बहुत काम आएगी। जी बिल्कुल श्रोताओं, है ना, अक्सर हमने देखा होता है कि चाहे वो आप कहीं भी गूगल पर सर्च कर लें या फिर कहीं भी आप देख लें, तो लिखा होता है ना कि दौलत जो है वो साथ नहीं जाएगी, है ना। लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर ये नहीं लिखा कि मरते दम तक जो है वो बहुत काम आएगी। ठीक है, दौलत साथ तो नहीं जाती है, बात सत्य है, लेकिन ये बात उससे भी ज़्यादा सत्य है कि अगर हम जब तक जीवित हैं तब तक काम तो आती है ना, और बहुत काम आती है। देखिए, बगैर विदाउट मनी मैन इज़ नथिंग, आदमी खासकर जो है वो बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। ये विडम्बना है इस समाज की, और ये ज़रूरी भी है कि आदमी के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, खासकर उतना पैसा तो ज़रूर हो कि वो खुद भी और अपने परिवार की भी सभी बेसिक नीड भी पूरी कर सके। और जो परिवार चाहता है कुछ एक चीज़ों को, जैसे कभी परिवार चाहता है कि वो घूमने निकल जाए, कभी परिवार चाहता है कि वो मूवी देखे, इस प्रकार की चीज़ें होना जो है वो बहुत लाजमी है और बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा। श्रोताओं, आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस

बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना श्रोतों वेड़ी गुंजन धर्मशाला में, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजी वेड़ी जो कि सचिन कपूर। चलिए तो कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं श्रोतों, और कार्यक्रम में अब आप सभी को लेके चलते हैं कुछ एक और जानकारियों की, और यूं ही बने रहेगा गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय कार्यक्रम चल रहा है और ये नाचीज सचिन कपूर इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहा है फिलहाल। तो आगे बढ़ते हैं श्रोतों, जानकारियों का पिटारा जो है वो भी खुलता रहेगा श्रोतों, और गीत संगीत का पिटारा भी खुलता रहेगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के मुख्य द्वार से लेकर शिक्षा बोर्ड बस स्टॉप और वन वाटिका तक सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जल शक्ति विभाग और नगर निगम धर्मशाला द्वारा संयुक्त रूप से पुरानी पाइपलाइन बदलने का कार्य किया जा रहा है श्रोताओं। इस कार्य का उद्देश्य वर्षों पुरानी और लीकेज वाली सीवरेज लाइन को बड़ी क्षमता वाली नई पाइपलाइन से बदलकर सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या का स्थायी समाधान करना है श्रोताओं। लगातार हो रही वर्षा के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो गया है। खुदाई के बाद सड़क पर मिट्टी के बड़े बड़े ढेर और कीचड़ जमा होने से शिक्षा बोर्ड बस स्टॉप के आसपास हालत बेहद खराब हो चुकी है श्रोताओं। वहीं ये धर्मशाला का प्रमुख बस स्टॉप है जहां रोजाना सैकड़ों विद्यार्थी कर्मचारी और आम नागरिक बसों से उतरते बस से उतरते ही लोगों को कीचड़ और फिसलन का सामना करना पड़ता है, और कीचड़ और फिसलन से होकर जो है श्रोताओं वो गुजरना पड़ता है। बाइक चालकों, पैदल यात्रियों और कॉलेज आने जाने वाले विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। कॉलेज में नया सत्र शुरू होने के साथ ही रोज़ाना बड़ी संख्या में प्रथम वर्ष के छात्र इसी मार्ग से धर्मशाला कॉलेज पहुंच रहे हैं। ऐसे में बारिश के बीच सड़क पर फैली मिट्टी और अधूरा निर्माण कार्य विद्यार्थियों की चिंता बढ़ा रहा है। लोगों का कहना है यदि जल्द सड़क को समतल नहीं किया गया तो किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है, और दुर्घटना होने के जो है वो कारण ज़्यादा हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एमसी धर्मशाला कार्य करते हैं, किस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रशासन कार्य करता है, ये देखने वाली बात है श्रोताओं। बहरहाल हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, अन्य जानकारियाँ भी हम आप तक यूं ही साझा करेंगे, आप तक पहुँचाएँगे। बने रहे, जुड़े रहिएगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ। लेके चलते हैं श्रोताओं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

শুধু এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা আপ সভি নে টিউন কিয়া হ্যায় অর মে হুঁ আপকে সাথ আপকা আপনা আরজে সচিন কাপুর কার্যক্রম ইস সময় চলা হুয়া হ্যায় গুড ইভিনিং ধর্মশালা হনে জানকারি আপ তক হাম পৌঁছা রে হ্যায় সাথ হি সাথ শ্রোতাও জানকারিও কে সাথ সাথ জো হ্যায় কুছ অর জানকারিয়া জো হ্যায় ও ভি আপ তক হাম জরুর পৌঁছায়েঙ্গে শ্রোতাও কুছ অর খাস জানকারিয়া अभी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे श्रोतों। तो ये धर्मशाला में सड़कों पर जो है वो रेडी लगाना पड़ा भारी, दो विक्रेताओं पर केस। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। जिला मुख्यालय एवं पर्यटन नगरी धर्मशाला में सड़क किनारे रेडी लगाकर यातायात और आम लोगों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में धर्मशाला पुलिस ने दो अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत कार्रवाई करते हुए जाँच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार जो है वो श्रोतों पुलिस जो है वो राउंड पर थी और इस दौरान नरवाना चौक में पुलिस टीम ने विनेवालिया निवासी योल को सड़क किनारे रेड़ी पर मोमोज और चौमिन बेचते हुए पाया। आरोप है कि रेड़ी लगाए जाने से यातायात प्रभावित हो रहा था और आम लोगों की आवाजाही में भी जो है वो बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस संबंध में थाना धर्मशाला में मामला दर्ज किया गया है। इसी दिन योल बाजार क्षेत्र में राउंड के दौरान पुलिस ने गजेंद्र को सड़क किनारे ठेले पर गोलगप्पे बेचते हुए पाया। पुलिस के अनुसार ठेला सड़क पर लगाए जाने से यातायात बाधित हो रहा था। इस मामले में शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत FIR दर्ज की गई है। धर्मशाला थाना पुलिस के दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ASP कांगड़ा वीर बहादुर सिंह का कहना है कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। गौरतलब है कि धर्मशाला मैकलोडगंज से लेकर शिवी चुमुंडा मंदिर तक लगातार इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़क किनारे से अब बिल्कुल सड़क पर ही दुकानें व रेड़ी फड़ियां सजने शुरू हो गई हैं। इससे स्थानीय लोगों व पर्यटकों को लंबे ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों व समाजसेवियों ने भी जो है वो मांग उठाई है कि सड़क किनारे ट्रैफिक बोझ को देखते हुए अब रेड़ी फड़ियों व बाहरी निकली हुई दुकानों को पूरी तरह से दुरुस्त करने को सरकार प्रशासन व पुलिस विभाग को बड़ा अभियान चलाना चाहिए। इसके साथ ही पार्किंग की भी जो है वो कड़ी कार्रवाई की जानी की मांग जो है वो स्थानीय लोगों ने प्रशासन व पुलिस विभाग से उठाई है। चलिए श्रोतों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए हैं समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतों और लेके चलते हैं आप सभी श्रोतों को इस प्यारे से गीत की ओर।

शुद्ध FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन की गूंज के साथ आप सभी बने हुए हैं और मैं नाचीज सचिन कपूर हूं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में लेके चलते हैं आप सभी को जानकारी की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि हाल ही में ही केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए नीट पेपर लीक ने लाखों विद्यार्थियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है।

उन्होंने कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में यूथ कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत संगठन प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निवीर योजना ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश के बड़ी संख्या में जो है वो युवा सेना में भर्ती होते थे, लेकिन अब चार साल की अल्पकालिक सेवा वाली व्यवस्था के कारण युवाओं का रुझान प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पुलिस सहित विभिन्न विभागों में पारदर्शी तरीके से जो है वो नियमित भर्ती कर रही है। चलिए, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं समय रेडियो गुंजन को और मैं हूं सचिन कपूर।

श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है जनाब एक बार फिर से सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोतों, और हम बिल्कुल फेसबुक के माध्यम से भी आप सभी जानते हैं कि लाइव आ रहे हैं, और बिल्कुल तो कुछ कोशिश उस प्रकार की रहती है हमारी कि लाइव आकर भी जो है वो फेसबुक के माध्यम से भी जानकारियां जो है वो हमारे श्रोताओं हमारे दर्शकों तक, देखिए क्योंकि फेसबुक में देखेंगे तो देखने वाले को हम दर्शक कहते हैं ना, तो दर्शकों तक भी पहुंचे और हमारे रेडियो के जो हमारे श्रोता हैं उन तक भी जो है वो सटीक जानकारी पहुंचाने का हमारा अक्सर प्रयास जो है श्रोताओं वो रहता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब लेके चलते हैं श्रोताओं आप सभी को इस जानकारी की ओर। धौलाधार होटल पार्किंग विवाद में क्रॉस FIR। जी बिल्कुल श्रोताओं, आप सभी को बताना चाहता हूँ जिला मुख्यालय धर्मशाला के कोतवाली बाजार स्थित धौलाधार होटल की पार्किंग में वाहन खड़ा करने और पार्किंग शुल्क को लेकर हुए विवाद में जो है श्रोताओं वो दोनों पक्षों की शिकायत पर धर्मशाला पुलिस ने अलग अलग क्रॉस FIR दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार धौलाधार होटल के कर्मचारी अजय कुमार की शिकायत पर धनश्याम और उनके पुत्र के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने होटल की पार्किंग में वाहन खड़ा किया और पार्किंग शुल्क देने के लिए जो है वो जब उन्हें पार्किंग शुल्क देने के लिए कहा तो कहने पर कर्मचारियों से बहस की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा धमकियां दी। वहीं श्रोतों धनश्याम के पुत्र पीयूष ने भी जो है वो शिकायत की और शिकायत पर होटल के प्रबंधक अमन और कर्मचारी अजय के खिलाफ भी जो है वो भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP वीर बहादुर सिंह का कहना है कि जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध जितने भी शस्य को जो है के आधार पर जो है वो आगामी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, यानी कि जितने भी वहाँ पर हो सकते हैं सबूत उनको जोड़कर जो है उस आधार पर जो है वो आगामी कार्रवाई जो है वो की जाएगी श्रोताओं। तो कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा श्रोताओं, पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ फ्रिक्वेंसी 91.2 MHz पर, और मैं हूं आपका अपना नाचीज सचिन कपूर। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजी रेडियो जॉकी सचिन कपूर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिटारा यूं ही खुलता रहेगा गीत संगीत का और जानकारियों का भी। श्रोतों, जिला कांगड़ा पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। श्रोतों, पुलिस विभाग कांगड़ा के हर पुलिस थाना के पुलिस अधिकारी व जवान सुबह से लेकर देर रात तक अब सड़कों में ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले तक पुलिस सड़कों व फील्ड में ड्यूटी देते हुए कम ही नज़र आती थी, जिसे लेकर अक्सर लोग समाज सेवियों व बुद्धिजीवियों में शिकायत भी देखने को जो है वो मिलती थी। श्रोतों, लेकिन अब ज़िला कांगड़ा में नए पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा आके कमान संभालते ही पुलिस का जो है पुलिस का सिंगम एक्शन जो है वो अंदाज एक्शन अंदाज देखने को जो है श्रोतों वो मिल रहा है। ज़िला के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटक स्थलों नशों संबंधित क्षेत्रों में रात्रि पुलिस जो है वो नाके लगा रही है और नाके जो हैं वो बढ़ा भी दिए हैं। श्रोतों, ऐसे में नियमों की अवहेलना व संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करने के साथ ही उन पर पूरी तरह से जो है वो इसने कमर कसी हुई है। श्रोतों, कई स्थानों में जो है वो बड़ी संदिग्ध गतिविधियों पर भी जो है वो पूरी तरह से रोक लगाई जा रही है, जबकि नशे व चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान भी तेज गति से चलने से ज़िला कांगड़ा में नशा तस्करों की नींद भी हराम हो गई है। इन दिनों थाना धर्मशाला, मैकलोडगंज, शाहपुर, पालमपुर, बैजनाथ, लंबागांव, पंचरुखी, कांगड़ा सहित अन्य जगहों में नाकों की बाढ़ सी जो है वो आ गई है, इस तरह महसूस हो रहा है। इतना ही नहीं, पुराने मामलों में भी जो है वो पुलिस एक्टिव होकर कार्य करती हुई जो है वो नज़र आ रही है। श्रोतों, और उन कार्य को निपटने में जो है वो कहीं ना कहीं सक्षम भी नज़र आ रही है। बहरहाल, आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए लेके चलो।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
2: श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
3: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को RBI की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित NCC की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। भारत और जापान ने मुक्त खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात $232 अरब से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी।
0: श्रोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आपने ट्यून किया है और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना, क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बाबा बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट फाट कंडीशन में रखिए, गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, अगर जान गए तो।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर।

0: तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
0: अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके।
1: क्या वो पापा जी मान गए?
0: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

शोध अंतराल के बाद आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम में। गुड इवनिंग धर्मशाला, इस समय चल रहा है और आप सभी सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अब अगली जानकारी की ओर। पर्यटक नगरी धर्मशाला मैकलोडगंज के समीप स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की नडी डल झील का आखिर कई वर्षों बाद जो है वो सौंदर्यकरण और पुनर्जीवन का कार्य इन दिनों जारी है। झील की वर्षों से जमा गंद और मिट्टी निकालकर इसकी जलधारा क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही लगातार सुक्कर मात्र कीचड़ बनी झील के सुराखों को भरने का भी प्रयास जो है वो इसे सुरक्षित जो है वो किया जा रहा है, जाने का प्रयास किया जा रहा है। श्रोतों, हालांकि बरसात शुरू होने के बाद झील से निकली गई गंद और मिट्टी दोबारा बहकर झील में पहुंचने लगी है, जिससे किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। इसे एक बार फिर से लोगों के धार्मिक आस्था, पर्यटन कारोबार सहित स्थानीय लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कंपनी और ठेकेदार की ओर से निकाली गई गंद की सुरक्षित निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। बारिश के चलते मिट्टी वापस झील में समा रही है, जिससे पूरे अभियान का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। श्रोतों, स्थानीय समाज सेवियों और धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों से भी बातचीत हुई तो बतल्ला पंचायत के उप प्रधान करनैल सिंह, समाज सेवी एवं कारोबारी नड्डी तोतारानी, बरनेट निवासी बिट्टू पठानिया, कारोबारी एवं प्रसिद्ध लोक गायक कमल नहरिया, वजीब सिंह राणा, दिनेश कपूर, विपिन नहरिया, प्रेम सागर, नरेश शर्मा, हिमालयन गद्दी यूनियन के एवं समाज सेवी मोहिंदर सिंह, डॉक्टर विशाल नहरिया व अन्य लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संबंधित विभाग से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते उचित प्रबंधन नहीं किए गए तो झील के संरक्षण और सौंदर्यीकरण पर खर्च की जा रही है।

राशि का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। चलिए, कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम श्रोताओं बिल्कुल लाइव आप सभी के वीडियो सेट पर चला हुआ है। लेकिन चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

तो बहुत प्यारा संगीत आप सभी ने सुना, वो लड़की बहुत याद आती है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं श्रोतों, लेके चलते हैं आप सभी को अगली जानकारी की। और आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन की उसी गूंज के साथ, हमारे साथ यानी कि हार्मूज में भारतीय जहाज़ों पर हमला। जी बिल्कुल, 10 बचाए एक लापता। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच ईरान ने ओमान तट के पास एक व्यापारी जहाज GFS, जिस जहाज का नाम था, उस पर हमला किया। श्रोतों, इस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे, इनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया जबकि एक भारतीय अभी भी लापता है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी इस्लामिक गार्ड ने साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज़ पर जो है कार्रवाई की है, क्योंकि वह कथित तौर पर अधिकृत समुद्री मार्ग के बजाय दूसरे रास्ते से गुजर रहा था। और IRGC का कहना है कि कई जहाज़ों को निर्धारित शिपिंग कॉरिडोर से गुजरने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया। ईरान ने फायरिंग को चेतावनी स्वरूप की गई कार्रवाई बताया और इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को अगली सूचना तक जो है वो बंद किया है। श्रोतों, ईरान ने कमर्शियल शिप पर अटैक के बाद बंद किया हॉर्मुज स्ट्रेट। भारत ने जताया कड़ा विरोध, अमेरिका ने तेज किए हमले, ईरान का भी जोरदार पलटवार है। श्रोतों, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी इस समय बने हुए हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला चला हुआ है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आप सभी को एक प्यारा सा गीत आप सभी के सेट पर।

श्रोतों कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला समय चला है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। तो आइए श्रोतों कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है अंतराल का और मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बाबा बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट पार्ट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो।

0: हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर। एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या, मना ही है कानून है फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
1: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
2: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
1: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
2: अच्छा ठीक है मैं करता हूँ बात। हेलो नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके
1: क्या वो पापा जी मान गए?
2: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

0: श्रोतों, वेड़ी गुंजन धर्मशाला में अब वक्त हुआ है प्रादेशिक समाचारों का। जुड़े रहिए, बने रहिए वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ।
1: से चर्चा की, उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर हिमाचल प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब हरियाणा सरकार बीबीएमबी से संबंधित अपने हिस्से के बकाया भुगतान के संबंध में स्पष्ट सहमति व्यक्त करेगी और सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय का शपथ पत्र दायर करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 वर्ष पूर्व के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद हिमाचल पिछले एक दशक से अधिक समय से अपने हिस्से की 13,066 मिलियन यूनिट बिजली और उससे जुड़े वित्तीय लाभों से वंचित है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वे इस विषय पर हरियाणा और पंजाब सरकार से चर्चा करेंगे और हिमाचल प्रदेश के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण व समाधान के लिए आवश्यक पहल करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज शिमला में ऊर्जा विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को किन्नौर जिला में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग कड़छम जलविद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि इसे अप्रैल 2027 तक शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पावर हाउस का करीब 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 1,579 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने की संभावना है। इससे राज्य की ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष करीब 900 करोड़ रुपए का योगदान मिलने का अनुमान है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला के सिविल अस्पताल हरोली में आज लगभग 8,42,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों वाले अतिरिक्त भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस भवन का निर्माण कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर, आधुनिक और अधिक सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत नशा मुक्त भारत 2029 का रोड मैप केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि देश की युवा पीढ़ी को नशे के अभिशाप से बचाने का राष्ट्रीय संकल्प है। राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ये अभियान पूरे देश के लिए तैयार किया है, जो ये दर्शाता है कि सरकार युवाओं के भविष्य और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है। राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र की इस नीति को पूरी गंभीरता के साथ अपनाना चाहिए और उन्होंने नशा मुक्त भारत के रोड मैप को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का सुझाव भी दिया।
2: रोड मैप तैयार किया गया है जहां सभी राज्यों को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। हम चाहते हैं कि हिमाचल सरकार भी इसको गंभीरता के साथ इम्प्लीमेंट करे और ये नशा जो है ये हमारे देश के नौजवानों पर सीधा अटैक है। तो ये जो नशा है ये आए दिन परिवारों को उजाड़ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार का ये अभियान है, ये लड़ाई केवल कानून के बल पर नहीं बल्कि समाज, परिवार, शिक्षा संस्थान और सरकारों की संयुक्त भागीदारी से ही जीती जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये जो निर्णायक लड़ाई है नशे के खिलाफ, इसको लड़ने के लिए बिल्कुल संयुक्त रूप से तैयार है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की या किसी विशेष दल की ना रहकर ये सभी राजनीतिक दल हो, सभी सामाजिक संगठन हो, ये सबको लड़ना पड़ेगी।
1: राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विशेष इकाई या क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने को लेकर वे जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपेंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोलन जिला परिषद के चुनाव आज सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें भाजपा की कुमारी शीला को अध्यक्ष और पंकज शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान भाजपा के जिला परिषद सदस्य उपस्थित रहे, जबकि कांग्रेस के सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये परिणाम केवल जिला परिषद का चुनाव नहीं बल्कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का स्पष्ट संकेत है। वहीं सोलन जिला परिषद में भाजपा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुने जाने पर सांसद सुरेश कश्यप ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस जीत से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जनता निराश है।
3: जीत का यह क्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है। अभी तक जो 7 जिला परिषद के नतीजे आए हैं उसमें 6 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, अब 7वीं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। ये जो जीत है ये कार्यकर्ताओं की जीत है और जिस प्रकार से 3.5 सालों में इस सरकार की जो नाकामियां रही वो आज उजागर हो गई हैं।
1: बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में किन्नौर जिला में करीब 800 निर्धन व उपेक्षित वर्गों के लोगों को भू पट्टे प्रदान किए गए हैं, जिससे उन्हें जमीन का स्वामित्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने आज कल्पा विकासखंड की कोठी और पुरवनी पंचायतों में जनसमस्याएं सुनी और इनका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सिरमौर जिला की पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई में आज छात्रा कबड्डी खेल छात्रावास का लोकार्पण किया। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस छात्रावास के आरंभ होने से क्षेत्र की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शिलाई में ही बेहतर प्रशिक्षण व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा के आधार को सुदृढ़ करने के साथ साथ युवाओं को नशे जैसी बुराई से बचाने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। उन्होंने आज राजकीय महाविद्यालय सोलन में डिजिटल पुस्तकालय के शुभारंभ अवसर पर कहा कि युवाओं को नशे के दलदल से बचाने के लिए नशा मुक्त हिमाचल अभियान आरंभ किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों विशेषकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शांडिल ने कहा कि इस पुस्तकालय के माध्यम से महाविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण और समृद्ध होगा।
4: सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषकर वैसे तो सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का प्रौद्योगिकी का शिखर पर जाना और बच्चों के लिए कैसी सॉफ्टवेयर ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो उनको डिजिटली अवेलेबल हो, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ब्रेक थ्रू है टेक्नोलॉजी की और बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हो रही है। मेरा मानना है कि इसी के साथ साथ हमें बच्चों का जो कल का भविष्य है उसको भी ध्यान में रखना है। बाकी डिजिटल लाइब्रेरी का बहुत ही बहुत स्वागत है। ज्ञान तो जितना अर्जन हो और जिस धीरे से हो वो बहुत अच्छी बात है।
1: राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने आज लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और हिमाचल प्रदेश में उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। हर्ष महाजन ने बताया कि केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से देश के करोड़ों गरीब व जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल रहा है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार की लापरवाही के चलते इसका लाभ आम लोगों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित की योजनाओं में बाधाएं उत्पन्न कर रही है और जनता पर लगातार नए आर्थिक बोझ डाल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बीबीएमबी से हिमाचल के लंबित वित्तीय अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का किया आग्रह। प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सतत विकास को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कहा, नशा मुक्त भारत 2029 का रोडमैप, युवा पीढ़ी को नशे के अभिशाप से बचाने का राष्ट्रीय संकल्प। सोलन जिला परिषद के चुनाव में भाजपा की कुमारी शीला अध्यक्ष और पंकज शर्मा उपाध्यक्ष चयनित, भाजपा नेताओं ने जताई प्रसन्नता। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई में कबड्डी खेल छात्रावास का किया लोकार्पण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर।
2: बुजुर्गों को सभी हक में
0: शोधो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और अब मुझे यानी सचिन कपूर को दीजिए आप इजाज़त, और जाते जाते बस यही कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए।

0: करण कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें?
2: थोड़ी देर हो गई। मुझे गिफ्ट नहीं, बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूँगा तो कब करूँगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: Desk.
1: Sir, describe.
2: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
0: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
3: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा हा? आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का, कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है, अब उसे कटोरी भर के दाल चावल हरी सब्जी फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ

0: रन कहाँ जा रहे हो? लेट्स गो।
1: अब चलें।
2: थोड़ी देर और। मुझे गिफ्ट नहीं बैलून चाहिए। थैंक यू।
0: क्या हुआ? ये सब क्या है?
2: जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं भी हवा जमा कर रहा हूँ। अभी से नहीं करूंगा तो कब करूंगा?
3: क्या हमारी आने वाली पीढ़ी का यही भविष्य है? अब नहीं तो कब? चलो एक कदम तो उठाएं, कम से कम एक पेड़ तो लगाएं।
4: जिस साल बरसात अच्छी होती है खेत लहलहाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, पर जिस साल बरसात नहीं होती उस साल आंसुओं की बरसात होती है। टापू टूपू, हम सोचते हैं कि काश पानी होता। इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। पानी बचाने के कई उपाय हैं। जब हर साल पानी होगा तो जानते हैं क्या होगा?

0: पंडित, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी, बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: हम जिंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं, अपना शरीर। याद रखो, तुम्हारी गाड़ी बदल सकती है, तुम्हारी नौकरी बदल सकती है, तुम्हारा घर भी बदल सकता है, लेकिन ये शरीर एक ही है। अगर सेहत खो दी तो बाकी सब चीजें अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने शरीर को खर्च मत करो, उसमें निवेश करो, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी सेहत है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे चाचा, आप खाना खाइए, मैं बाद में आता हूँ।
2: अरे आओ आओ बेटा, कटोरी तैयार है, ये रही। नमस्ते।
1: कस्तूरी क्या करेगी कटोरी का? कैलाश लिखना था, आपने गलती से कस्तूरी लिख दिया है।
2: गलती तो पापा कर रहे हैं, कस्तूरी अब 6 महीने की हो गई है। अब उसे कटोरी भर के दाल चावल, हरी सब्जी, फल खिलाना है और 7वां महीना पूरा होते होते ही पूरे 2 कटोरी, ये मेरी तरफ से।
3: 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी नहीं होता। शिशु को रोग मुक्त रखने के लिए और उसके सही मानसिक और शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध के साथ 2 से 3 कटोरी खाना, जैसे गाढ़ी दाल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, दही रोज खिलाएं। और जो मांसाहारी है वो अंडे मांस भी खिलाएं।
1: कटोरी खत्म।
3: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
4: सुनो, मुझे लग रहा है मैं ना धीरे धीरे पागल होती जा रही हूँ।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: कल मैं घर पे अकेली थी ना,
5: हाँ?
4: मैं दरवाजा लॉक करके नीचे सब्जी लेने गई,
5: हाँ?
4: वापस ऊपर आई, आधे घंटे तक अपने घर की बेल बजाती रही, ये सोच के कि अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा।
5: अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, हैं? वैसे एक बात बताओ, फिर दरवाजा किसी ने खोला या नहीं?
6: कौन है?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दर्शकों, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दोपहिया चला आ रहा है, अरे पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुके रुके रुके रुके,
1: अरे बच्चन साहब,
0: आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट फाट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए।
1: बच्चन साहब, एक सेल्फी,
0: पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर
1: ओ यस यस हां सर,
0: तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल भैया, आखिर जान का है सवाल।
2: हे प्रिय मित्र, तुम्हारे मन में जो अच्छी भावनाएं हैं वही इस संसार को और भी सुंदर बनाती हैं। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की देर है। आज तुम जो भी नया सीख रहे हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक प्यारी सी चमक जोड़ रहा है। हर दिन का उदय तुम्हें एक नया मौका देता है अपनी खुशियों को और बढ़ाने का। तुम जो अपने काम में प्रेम भरते हो वही उसे दूसरों से अलग और खास बनाता है। ठहर कर बस ये देखो कि आज का दिन कितना अद्भुत है, यही जीने का असली आनंद है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, बस इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो।

0: बचाओ, देश बनाओ।
1: इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, हवा में ये कैसा जहर, आहिस्ता आहिस्ता ये मरता शहर। एक मौत की सौगात है जलती हुई जो तेरे हाथ है। आखिर इस शहर को हुआ क्या? मनाही है, कानून है, फिर भी सिगरेट का जुनून है। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, मुझे सिगरेट बीड़ी दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें न करने दें।
2: यार इतनी गर्मी हो रखी है, एक एसी भी नहीं लगवा सकते क्या हम?
3: यार तुम्हें तो पता ना हमारा हाथ कितना टाइट है यार।
2: यार एक बार पापा से बात करके देख लो, उनकी हेल्प ले लो।
3: अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात। हेलो, नमस्ते पापा जी। हाँ जी सब बढ़िया। पापा जी एक हेल्प चाहिए थी, वो एक्चुअली नेहा को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, तो एक एसी लगवाना था। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, थैंक यू सो मच। ओके।
2: क्या वो पापा जी मान गए?
3: अरे मानेंगे कैसे ना, एक ही तो दामाद है उनका। अब तो खुश हो ना?

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।